मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि तदनुसार 24 अगस्त 2026 प्रातः के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौड़। आप सभी को हमारा नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित

0: GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

0: शर्मा बंधुओं के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार का ये आलेख। विषय है भारतीय परिवार मूल।
1: वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप सांसारिक सुख सुविधाओं ने आज के मनुष्य को आत्म केंद्रित अधिक बना दिया है। कहने को तो सब कहते हैं कि यह युग वैश्वीकरण का है। विश्व के समस्त देश संचार साधनों की सहज उपलब्धि से एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि देशों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि आर्थिक दृष्टि से बड़े देश छोटे देशों को समाप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं। एक विश्व के निर्माण का यह कौन सा रूप है? विश्व निर्माण की बात करने से पहले राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से पहले समाज निर्माण तथा समाज निर्माण से पहले परिवार निर्माण करना अनिवार्य होगा। भारतीय संस्कृति का यह मूल तत्व माना गया है कि संस्कारवान तथा मानवीय मूल्यों से युक्त परिवार ही क्रमशः समाज, राष्ट्र और अंततः इस विश्व को रहने योग्य बनाए जाने की मुख्य धुरी है। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझने की भावना ही परिवार व्यवस्था का मूल मुख्य सूत्र होता है। भारत के शास्त्रों में आदर्श परिवार व्यवस्था के लिए अथर्ववेद के

0: मनुष्य सूक्त में उन मौलिक बिंदुओं की चर्चा की गई है जो भारतीय परिवार मूल्य के मूल आधार माने जा सकते हैं। यह ऋचा इस प्रकार है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जात मिवाघ्न्या। अर्थात परमपिता परमेश्वर की ओर से आदेश है कि हे गृहस्थ जनों, मैं तुम सबको सहृदय युक्त सामनस्य वाला तथा परस्पर विद्वेष और विरोध रहित करता हूँ। तुम सब एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले बनो और एक दूसरे को ऐसे चाहो जैसे गौ सद्य उत्पन्न अपने बछड़े को चाहती है। परिवार मूल्य की यह आदर्श स्थिति है जहाँ संतान माता पिता की आज्ञाकारी हो, इनके मन परस्पर मिलते हों, पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति मधुर और शांतियुक्त वाणी बोलने वाले हों, भाई भाई से, बहन बहन से और सब परस्पर द्वेष भाव से रहित हों, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों। परिवार को सुखी तथा जीवन को आनंदमय बनाने वाला आदर्श परिवार का यह वैदिक प्रकरण बहुत विस्तार से वर्णित है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधुनिक बुद्धिजीवी इस परिवार व्यवस्था को आधुनिक जीवन पद्धति में अस्वीकार्य कह सकते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इस परिवार व्यवस्था के मूल में जिन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की गई है, वे बिंदु ही परिवार क्या समाज, राष्ट्र और विश्व को कल्याणमय बनाने के मुख्य बिंदु हैं। सहृदयता अर्थात हृदयगत भावना की समानता है। यह तभी होती है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। रामकथा के उस प्रसंग को याद करें जहां लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से मूर्छित देखकर श्री राम बहुत दुखी होते हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर लोगों ने लक्ष्मण से लक्ष्मण का दुख पूछा तो लक्ष्मण का उत्तर था कि आप राम से पूछिए कि मेरा दुख और पीड़ा कैसी थी। हमने राम कथा का पारायण तो बहुत किया, किंतु राम और लक्ष्मण के बीच की पारिवारिक सहृदयता को कितना सीखा। इस सहृदयता का स्वाभाविक परिणाम सामनस्य होगा, अर्थात परिवार के सदस्यों के मन एक दूसरे के प्रति शुभ भावों वाले तथा समान प्रकार के चिंतन से युक्त होंगे। एक दूसरे के प्रति खान पान की उदारता तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान का भाव ही परिवार में सुख और शांति का आधार होता है। इन गुणों का स्वाभाविक परिणाम विद्वेष तथा वैर भाव का अभाव ही होगा। एक दूसरे के प्रति प्रीतियुक्त व्यवहार पारिवारिक सुख शांति का मुख्य आधार बनता है। इन गुणों की स्वीकार्यता में किसी भी आधुनिक बुद्धिजीवी का विरोध संभव नहीं है। आज के भौतिक युग में संयुक्त परिवारों की बातें नई पीढ़ी के लिए यद्यपि परिकथाओं जैसी हो सकती हैं, किंतु नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए धन कमाने वाली शिक्षा के साथ परिवार के बुजुर्गों द्वारा दी गई नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा की उपयोगिता का महत्व कम नहीं हो सकता। वर्तमान एकल परिवारों में भारतीय परिवार मूल्यों की अनिवार्यता को पुनः अनुभव किया जाने लगा है, जिनके अभाव में पिछले लगभग 50 वर्षों से हम अपनी संस्कृति के इस मुख्य बिंदु से दूर होते जा रहे हैं। ये पारिवारिक मूल्य हमारे समाज और राष्ट्र के वास्तविक संरक्षक हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार का ये आलेख। विषय था भारतीय परिवार मूल्य। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है फसल चक्र क्यों व कैसे। जानकारी दे रही हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, हम सबकी कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोए उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, और इसके लिए हम संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, और फसल में किसी कीट बीमारी का भी प्रकोप होता है तो उसकी भी रोकथाम के हम समय समय पर उपाय करते हैं। इन सब कृषि क्रियाओं के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीमित कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लें, क्योंकि भूमि हमारी बहुत कम है और इसी में हमें

0: अलग अलग परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी और उन्हें दोबारा उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता रहेगा। इसी तरह से अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद में अधिक पैदावार देने वाली फसल को लेना चाहिए। इससे पिछली फसल की बची हुई खाद का सदुपयोग हो जाता है और किसान भाइयों को अधिक खाद नहीं देनी पड़ती है। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोना चाहिए, क्योंकि फलीदार फसलों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल जाता है। इन फसलों की कटाई के बाद बिना फलीदार फसलें बची हुई नाइट्रोजन का उपयोग कर लेती हैं। इसी प्रकार अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलों के बाद कम जल ग्रहण करने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से जमीन में लगातार अधिक जल बने रहने के कारण वायु संचार और जीवाणुओं की क्रियाओं में भी बाधा पड़ती है, इससे बचा जा सकता है। आपको हम एक बात और बता दें कि किसान भाइयों कि अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साथ ही उपलब्ध कृषि साधनों के आधार पर भी हम फसलों का चुनाव करें। किसान भाइयों, अब हम आपको फसल चक्र अपनाने के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में बताते हैं। फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, रोग और कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे अनावश्यक पौध संरक्षण दवाओं पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ खरपतवारों के नियंत्रण में भी मदद मिलती है। फसलों को हेर फेर कर बोने से जमीन की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ने नहीं पाती है, जैविक दशा ठीक रहती है। फसलों की पैदावार बढ़ती है, फसल उत्पादन में लागत कम आती है, इसी तरह भूमि का कटाव भी कम होता है। किसान भाइयों के पास उपलब्ध साधनों जैसे बीज, खाद, पानी और श्रम का पूरी क्षमता के साथ उपयोग हो जाता है और साल भर आमदनी भी होती रहती है। फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय जो मुख्य कारक या प्रभाव डालने वाली बातें हैं, उनमें जलवायु, मिट्टी, सिंचाई का साधन, मजदूरों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताएं, बाजार की मांग, ये सब बातें फसल चक्र को प्रभावित करती हैं। खेती के प्रकार में यदि डेयरी फार्म है और जहाँ मुर्गी उद्योग मुख्य होता है, वहाँ फार्म का अधिकतर क्षेत्रफल चारे तथा दानों की फसलों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यदि हम फसलों को हेर फेर करके बोएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी मिलेगी, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साल भर फसलें उगा करके भी हम कीट रोग से फसलों को बचाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी, विषय था फसल चक्र क्यों व कैसे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
4: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ। जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज क्षेत्रम अंतरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अंतरिक्ष क्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुं इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
3: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अंतरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मकक्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अंतरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुम् समर्थं सुदृढं अंतरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस देशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिक यात्रायै मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेश मंत्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदान करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं जापानस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो नागोया ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां दर्शयति। इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा भारतं जापानं च व्यापार निवेश सम्बन्धान् महत्वपूर्णतया सुदृढीकर्तुं प्रयतमानौ स्तः। वृक्ष क्रीडा मन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे क्रीडा सम्बद्ध संयुक्त घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्ना। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संवादेन पारस्परिक सम्मानेन अथ सर्वसमावेश भावेन क्रीडा क्षेत्रे सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता। एतत् उपवेशनम् अस्मिन् वर्षे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य एलुरु जनपदस्य मुसुनुरु ग्रामं गमिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिकरूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तारक्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकरबीजस्य शुभारंभं करिष्यति। असौ कृषकेभ्यः सम्माननं प्रदास्यति तथा कृषिक्षेत्र संबंधान हितधारकान अन्यांच सहभागिनः संबोधयिष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाता है। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे रश्मि शर्मा सभा से उनका काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 7:30 से 8 के बीच। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश 10:05 से 11 के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 8:30 आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे गौरी पंडित के भजन। सुगम संगीत का एक और कार्यक्रम आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं।

8:58 पर सुनिए इस घंटे की खास खबरें। इसे भोपाल से अनुप्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान का सारंगी वादन, राग होगा रामकली। साथ ही साथ जिले की चिट्ठी आप सुनते हैं रोज सुबह 10 बजे से। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 11 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे और हमारी शाम की सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी।

हमारी शाम की सभा में सुनिए 5 बजे युवाणी कार्यक्रम और 6 बजे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 7:20 पर हमारी केंद्र से चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वर्षा जल का संग्रहण जरूरी क्यों। चौपाल कार्यक्रम में ही आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी।

रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक के सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव। 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प। आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाओं और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित गांवों और नगरी वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाने और पानी के स्रोतों के क्लोरिनेशन कराने को कहा गया है। उन्होंने फसल और मकानों के हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कर आरबीसी 64 के तहत सहायता देने के भी निर्देश दिए।
1: किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरे प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह हमारे द्वारा दिया जाए, तो इस तारीख से 27 तारीख जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ सावधानी के लिए भी बाढ़ के कारण से कुछ कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी नॉन जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति किसानों को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद भी होगा। प्रदेश को 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ कॉन्क्लेव कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 130 से ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य विचार वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस है, यानी हर संस्थान प्रदेश के विकास के लिए एक संकल्प देगा। राज्य सरकार के विभाग खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, पर्यावरण और कौशल जैसे क्षेत्रों की अपनी चुनौतियां संस्थानों के सामने रखेंगे। इसके बाद संस्थान अपने शोध, तकनीक और विशेषज्ञता के जरिए इन समस्याओं के समाधान की दिशा सुझाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सांची के उप डाकघर का आधुनिकीकरण और लुक एंड फील सुधारने का काम पूरा कर लिया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक स्वरूप दिया गया है। आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी और डाक विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते डिंडौरी जिले ने जुलाई माह के मध्य में देश के 100 चयनित जिलों में प्रथम रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
3: डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिंडोरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में नियमों के पालन की जांच के लिए कल भोपाल के 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। आयुष्मान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारत अरविंद शाह और विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं मिलने पर यशवी मल्टी स्पेशलिटी, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी और मारुति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तीनों अस्पतालों को 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है। श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार को प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल है। इस मौके पर भगवान महाकाल सहित प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आज भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। वहीं आगरमालवा में राजाधिराज श्री बैजनाथ महादेव और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पारंपरिक शाही सवारी भी निकलेगी। इन सवारियों में अखाड़े, आकर्षक झांकियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों जिलों में करीब 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन, जबलपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल, रीवा और सीधी समेत प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना और आसपास के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जबलपुर पुलिस की महिला आरक्षक और राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल की खिलाड़ी वर्षा पटेल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्षा ने 21 अगस्त की सुबह 9:07 पर 5,642 मीटर की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा और मध्य प्रदेश पुलिस का झंडा फहराया। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है। दूसरे दौर के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हार से बचना था। वहीं क्रिकेट में भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में 300 रन पर 5 विकेट से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाएगा। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले रखी है। वहीं एशियाई खेल के तहत जापान के आईची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन एथलेटिक्स, क्रिकेट, कैनो, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग और सॉफ्ट टेनिस समेत 10 खेलों के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में 25 खिलाड़ी खेल अकादमी और पूर्व अकादमी से हैं, जबकि 7 खिलाड़ी गैर अकादमी श्रेणी के हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जननायक समारोह का समापन गोंड नायक राजा हीरा खान सिंह छत्री पर केंद्रित प्रभावी मंचन के साथ हुआ। झाबुआ में खाद्य सुरक्षा दल ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दुकानों का निरीक्षण कर कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस, वाटर टेस्टिंग और स्वच्छता अभिलेखों की जाँच की। डिंडौरी पुलिस लाइन परिसर में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छतरपुर में त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए गंभीर जन्मजात विकृति से पीड़ित नवजात को PM श्री एम्बुलेंस सेवा से बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इंदौर और गुना में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस और चल समारोह निकाले गए। शिवपुरी में पेयजल परिरक्षण अधिनियम में ढील देते हुए जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मंडला जिले के बिछिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वन स्टॉप सेंटर की ओर से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जबलपुर के नेपियर टाउन में संभाग स्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने DNA जांच, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस के तहत आज भोपाल में कॉन्क्लेव। 130 से ज्यादा केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थान होंगे शामिल। सांची उप डाकघर का हुआ कायाकल्प। आज शाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से होगा लोकार्पण। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी। डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए, रश्मि शर्मा सभा से उनका काव्य पाठ।
2: गजल का मतलब हाजिर करती हूँ कि किस आलम की किस मंजर की होती हैं, किस आलम की किस मंजर की होती हैं यादें जो अपने अंदर की होती हैं, किस आलम की किस मंजर की होती हैं यादें जो अपने अंदर की होती हैं। और भूले से भी पाल ना लेना वहम कोई, भूले से भी पाल ना लेना वहम कोई, कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं। भूले से भी पाल ना लेना वहम कोई, कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं। और नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, दहलीजें जो कच्चे घर की होती हैं। नाम से वो पहचानती हैं हर आहट को, दहलीजें जो कच्चे घर की होती हैं। और ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है, बतौर ख़ास ये शेर हाजिर करती हूँ कि ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है, नींदे सारी कारीगर की होती हैं। ख्वाब किसी पत्थर का पूरा होता है, नींदे सारी कारीगर की होती हैं। अगली गज़ल का मतला हाजिर करती हूँ कि वक्त से पहले सितारों को पुकारा जाए, वक्त से पहले सितारों को पुकारा जाए, शाम के सांवले चेहरे को संवारा जाए। वक्त से पहले सितारों को पुकारा जाए, शाम के सांवले चेहरे को संवारा जाए। और बतौर ख़ास ये शेर कि दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, धूप निकले तो ज़रा इनको निखारा जाए। दिल के बक्से में कई भीगे हुए मौसम हैं, धूप निकले तो ज़रा इनको निखारा जाए। और राह भूला है मेरा चाँद कहीं जंगल में, राह भूला है मेरा चाँद कहीं जंगल में, ढूंढने उसको कोई अपना सितारा जाए। राह भूला है मेरा चाँद कहीं जंगल में, ढूंढने उसको कोई अपना सितारा जाए। बतौर ख़ास ये शेर हाजिर करती हूँ कि एक एक लम्हे को जी भर के जिया जाए कभी, एक एक लम्हे को जी भर के जिया जाए कभी, और कभी वक्त को बेकार गुजारा जाए। एक एक लम्हे को जी भर के जिया जाए कभी, और कभी वक्त को बेकार गुजारा जाए। और हमको मायूसी के दलदल से जो बाहर लाएं, हमको मायूसी के दलदल से जो बाहर लाएं, ऐसे ख्वाबों को सबा क्यों ना दुलारा जाए, ऐसे ख्वाबों को सबा क्यों ना दुलारा जाए। अगली गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ, वो जो हर वक्त सोचता है मुझे, वो जो हर वक्त सोचता है मुझे, खुद से बिछड़ा हुआ मिला है मुझे। वो जो हर वक्त सोचता है मुझे, खुद से बिछड़ा हुआ मिला है मुझे। और एक आहट सी आती रहती है, एक आहट सी आती रहती है, कोई तो है जो ढूंढता है मुझे। एक आहट सी आती रहती है, कोई तो है जो ढूंढता है मुझे। और गहरे पानी की ओर बढ़ते ही, बतौर ख़ास ये शेर हाजिर करती हूँ कि गहरे पानी की ओर बढ़ते ही खुद ब खुद दरिया रोकता है मुझे। गहरे पानी की ओर बढ़ते ही खुद ब खुद दरिया रोकता है मुझे। और हाले दिल जब सुनाना चाहा तो, हाले दिल जब सुनाना चाहा तो उसने हंस के कहा पता है मुझे, हाले दिल जब सुनाना चाहा तो उसने हंस के कहा पता है मुझे। और ख़ुद पर आखिर गुरूर क्यों ना करूं, खुद पर आखिर गुरूर क्यों ना करूं, उसके हर ख्वाब ने चुना है मुझे। खुद पर आखिर गुरूर क्यों ना करूं, उसके हर ख्वाब ने चुना है मुझे। और ज़िंदगी एक नट की रस्सी है, ज़िंदगी एक नट की रस्सी है, उस पे भी चलना आ गया है मुझे। ज़िंदगी एक नट की रस्सी है, उस पे भी चलना आ गया है मुझे। और आसमां से उतर के चांद सबा, मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि आसमां से उतर के चांद सबा दे के थपकी सुला रहा है मुझे, वो जो हर वक्त सोचता है मुझे, खुद से बिछड़ा हुआ मिला है मुझे। अगली गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ कि मेरे बजाय मेरे दुख से बात करती है, मेरे बजाय मेरे दुख से बात करती है, ये काम कोई नहीं सिर्फ रात करती है। मेरे बजाय मेरे दुख से बात करती है, ये काम कोई नहीं सिर्फ रात करती है। और हमारे पास नहीं होता जिसका कोई जवाब, हमारे पास नहीं होता जिसका कोई जवाब, वही सवाल तो अक्सर हयात करती है। हमारे पास नहीं होता जिसका कोई जवाब, वही सवाल तो अक्सर हयात करती है। और पता करेंगे सफ़र पर निकल के हम भी कभी, पता करेंगे सफ़र पर निकल के हम भी कभी, मुसाफिरों से हवा किसकी बात करती है। पता करेंगे सफ़र पर निकल के हम भी कभी, मुसाफिरों से हवा किसकी बात करती है। और सुनो खामोश से रहते हो हर घड़ी तुम तो, सुनो खामोश से रहते हो हर घड़ी।

0: तुम तो तुम्हारी याद मगर कितनी बात करती है। सुनो खामोश से रहते हो हर घड़ी तुम तो तुम्हारी याद मगर कितनी बात करती है। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि कहीं पे रात कहीं दिन उगाने की धुन में, कहीं पे रात कहीं दिन उगाने की धुन में अजब करिश्मे सबा कायनात करती है। कहीं पे रात कहीं दिन उगाने की धुन में अजब करिश्मे सबा कायनात करती है। मेरे बजाए मेरे दुख से बात करती है, ये काम कोई नहीं सिर्फ रात करती है। अगली गज़ल का मतला और आखिरी गज़ल का मतला मैं हाजिर करती हूँ कि दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए, दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए, रास्ता चाहिए सबको ही निकलने के लिए। दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए, रास्ता चाहिए सबको ही निकलने के लिए, और ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, और एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए। ख़त्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में, और एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए। और मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए। मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रश्मि शर्मा सभा से उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है और आवाज़ लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत के बोल लिखे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बेमिसाल से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। इसे अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। गीत और संगीत लिखा है रविंद्र जैन ने, फिल्म अखियों के झरोके से। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है हेमलता ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
4: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
4: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर को आइए सुनवाते हैं फिल्म फकीरा में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बाहर लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस

0: फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिता फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
6: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
5: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
6: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत।
5: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
7: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of the cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, in Moscow today. He will also meet his Russian counterpart, Sergei Lavrov, and exchange perspectives on regional and global issues. More from our correspondent.
8: Dr. Jayashankar arrived in Moscow yesterday on a two-day official visit to Russia. He is visiting Russia at the invitation of First Deputy Prime Minister of Russian Federation, Denis Manturov. India and Russia have a long-standing and time-tested partnership. Since the signing of the Declaration of the India-Russia Strategic Partnership in October 2000, India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas, including political, security, defense, trade, and economy, science and technology, culture and people-to-people ties. Under the strategic partnership, several institutionalized dialogue mechanisms operate at both political and official levels to ensure regular interaction and follow-up on cooperation activities. The India-Russia Intergovernmental Commission has two divisions, trade, economic, scientific, technological and cultural cooperation, and military and military-technical cooperation. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
5: 18th BRICS Academic Forum started in Lucknow yesterday and the deliberations will continue till Tuesday as part of India's BRICS presidency. More from our correspondent.
9: The Observer Research Foundation, in partnership with the Research and Information System for Developing Countries and the University of Lucknow, are the conveners of the forum. Held under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, the forum will bring together academics, researchers, experts and policymakers from BRICS countries to discuss key global challenges and explore practical policy-relevant pathways for strengthening cooperation. A key highlight of the forum will be a Sherpa's address by Sudhakar Dalela, Secretary and BRICS Sherpa, Ministry of External Affairs, Government of India. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
5: Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, high-expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department, or IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh today. Odisha is bracing for another spell of very heavy rainfall, with the IMD forecasting intense rain over several parts of the state during the next 24 hours. The red warning, valid till this morning, covers five districts: Cuttack, Angul, Dhenkanal, Kalahandi and Nabarangapur, while orange warnings have been issued for 18 districts and yellow warnings for several others. Incessant rain in Gajapati and Koraput has disrupted normal life, damaged crops and inundated low-lying areas, with several places remaining marooned. We have more from our correspondent.
10: In Gajapati and Koraput, incessant rainfall has severely affected normal life, with several low-lying areas inundated and people facing difficulties in accessing essential services. Overflowing rivers' waters have damaged standing crops, while a number of areas remain marooned. Communication has been disrupted in several parts of southern Odisha, with road connectivity affected at various locations. The continuing rain has heightened the risk of further waterlogging and localized flooding. District administrations and field officials are maintaining round-the-clock vigil in vulnerable areas, monitoring the the situation and taking precautionary measures, people in low-lying and flood-prone areas have been advised to remain alert and follow instructions issued by local authorities. Meanwhile, the flood situation remains a concern in parts of northern and coastal Odisha. All schools and Anganwadi centers in Nabarangpur and many schools in Bhadrak and Jajpur districts are closed today as a precaution. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
5: The depression formed over the North Bay of Bengal and adjoining coastal areas of West Bengal and Bangladesh is moving northwestwards. A report.
11: The depression formed over the North Bay of Bengal and adjoining coastal areas of West Bengal and Bangladesh moving northwestwards. It is likely to move across Gangetic West Bengal towards north.

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो गया है सुगम संगीत का। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गौरी पंडित के भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गौरी पंडित के भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गौरी पंडित के भजन। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं सुगम।

0: अब समय हो गया है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत कल अस्पतालों में नियमों के पालन की जाँच के लिए 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया और अनियमितता पाए जाने पर 3 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए योजना से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। श्रावण मास के अंतिम और चौथे सोमवार को प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल है। इस मौके पर भगवान महाकाल सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए डिंडौरी और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है। दूसरे दौर के आखिरी मैच में भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस मुकाबले में जीतना जरूरी था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 24 अगस्त 2026। आज के दिन क्या क्या है खास, इस पर आज हम आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे तो आज के दिन को कई तरीके से जाना जाता है, जैसे प्लूटो का पदावनत दिवस, कलकत्ता शहर का जन्म, भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म और अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस, साथ ही साथ नेशनल वॉफल्स डे। इन सभी विषयों पर आज हम आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, जो लोग अनोखी और विचित्र चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा दिन है जो उनकी संगीतमय आत्मा को तृप्त करेगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस सामान्य से परे जाकर नए क्षितिजों से भरी दुनिया के द्वार खोलने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अजीब शब्द का अर्थ अपरिचित या विचित्र हो सकता है, या दोनों। ये चुनाव तो इंसान का व्यक्तिगत ही होता है। किसी भी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस इस बात को दर्शाता है कि नए संगीत के प्रति कैसे जागरूकता बढ़ानी है। अगर बात की जाए इसके इतिहास की, तो अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस की शुरुआत पैट्रिक ग्रांट ने की थी, जो उस समय न्यूयॉर्क शहर के संगीतकार और संगीत रचयिता थे। इस दिवस का मूल विचार सरल है, लोगों को ऐसे संगीत को बजाने और सुनने के लिए प्रेरित करना जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। पैट्रिक ग्रांट का मानना था कि लोगों के संगीत के दायरे को व्यापक बनाने से समाज के जीवन में अन्य पहलुओं को देखने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है। उनका मूल मंत्र है बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना। उन्होंने 24 अगस्त को इसलिए चुना क्योंकि ये उनकी पिता का जन्मदिन था, उनके लिए एक तरह के कलात्मक गुरु रहे थे। 2002 तक ये दिन लोकप्रिय हो रहा था और विभिन्न कलाकारों और स्थानों द्वारा इसे अपनाया गया। जब उन्हें पता चला कि ये दिन यूरोप में भी मनाया जाने लगा है, तो उन्होंने नाम में अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़ने का निर्णय लिया। आप संगीत प्रेमी हो या ना हो, यह दिन हर किसी के लिए है, चाहे संगीत सुनना हो या वादन। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाने से संगीत का आनंद लेने और नए विचारों को अपनाने के अनगिनत अवसर मिलते हैं। इन तरीकों से जश्न मनाएं, जैसे हम इस विशेष दिन क्या कर सकते हैं, ये कुछ हटकर है, तो इसमें कुछ हटकर ही होगा। असाधारण संगीत सुनकर जश्न मनाने का ये दिन एक बेहतरीन मौका है। कोई अनोखा कलाकार, कोई अनोखी शैली, या फिर अजीब बोलो वाला कोई गाना हो। अक्सर हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर देखते हैं कि कोई स्पेशल धुन लोगों की नज़र में आती है और आते आते वो वायरल हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वह राष्ट्रीय हो, हमारी बोली हो, हमारी भाषा हो, वह अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। तो ये दिन उस दिवस को मनाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम अपने अगले विषय पर चर्चा करें, तो आज है प्लूटो का पदावना दिवस। कई सालों से स्कूल में विज्ञान की कक्षा में बच्चे सौर मंडल के 9 ग्रहों को नाम याद रखने के लिए कुछ मज़ेदार तरकीबें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे आप सब और हम सब ने पढ़ा होगा, कहते हैं ना, माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अप नटी पीनट बटर। तो अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस पूरी लाइन में, इस पूरी पंक्ति में जो इनिशियल्स हैं, यानी जो इस लाइन के शब्दों के पहले जो लेटर हैं, वो हमारे सौर ग्रहों के लेटर्स को दर्शाते हैं। ये लाइन बच्चों को सौर ग्रह के नाम याद रखने में मदद करता था, लेकिन हाल के वर्षों में ग्रहों की सूची में एक नाम कम हो गया है,
यानी वो आखिरी वर्ड प्लूटो से पी हटा दिया गया, क्योंकि प्लूटो को ग्रह का दर्जा कम कर दिया गया। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंतरिक्ष और अनेक रहस्यों से मोहित होते हैं। पृथ्वी के सौर मंडल के वर्गीकरण में 2006 में एक महत्वपूर्ण और लोगों के लिए बहुत ही नाटकीय परिवर्तन हुआ था। ये वह समय था जब प्लूटो को पूर्ण आकार के ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने की यह प्रक्रिया 2005 में शुरू हुई थी, जब नेपच्यून की कक्षा के बाहर प्लूटो के ही क्षेत्र में स्थित एक बौने ग्रह एरेस की खोज हुई। चूंकि यह बौने ग्रह एरेस वास्तव में प्लूटो से बड़ा था, इसलिए इसके वर्गीकरण में जटिलताएं उत्पन्न हुई। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने आधिकारिक तौर पर यह निर्णय लिया कि प्लूटो को पूर्ण आकार के ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाना आवश्यक है। यह निर्णय आज ही के दिन यानी 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में लिया गया। हालांकि इस पुनर्वर्गीकरण निर्णय का कई खगोलविदों ने कड़ा विरोध किया। उनका दावा था कि सम्मेलन में पर्याप्त प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। विश्व के केवल लगभग 5% खगोलविदों ने पुनर्वर्गीकरण परियोजना पर मतदान किया। इस ग्रह को बौना ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के को लेकर विवादों के बावजूद प्लूटो डिमोटेड डे हर साल इसी अवसर को मनाने के लिए मनाया जाता है। सौरमंडल के पूर्व नौवें ग्रह के प्रशंसकों के लिए दुखद है, लेकिन प्लूटो डिमोटेड डे हमारे वैज्ञानिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इसे याद रखना ज़रूरी है। इस दिन को मनाना प्लूटो की ग्रह की रूप में पूर्व स्थिति को याद करने का एक अच्छा तरीका है। इसकी खोज 1930 में हुई थी और 2006 में इसे ग्रह का दर्जा देने से रोक दिया गया। आज के दिन इस जानकारी को आप अपने बच्चों से साझा कर सकते हैं, जिनका सिलेबस कुछ हटकर नया हो गया है, तो उन्हें भी ये इतिहास की एक खबर पता होनी चाहिए कि हमारे सौरमंडल में अब क्या क्या चल रहा है। तो बच्चों की बात हुई है, कार्यक्रम में अगला गीत हम सुनते हैं बच्चों के लिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: 0022233.
1: एक बार फिर आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, 24 अगस्त 1690 को कलकत्ता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इस समय अंग्रेज व्यापारी जॉब चार्नोक यहाँ आए और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। उस समय आज जैसा बड़ा शहर कलकत्ता नहीं था। यहाँ सुतानुटी, गोविंदपुर और कलिकाता नाम के तीन छोटे छोटे गांव थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इन जगहों पर अपना व्यापार और बस्ती बढ़ानी शुरू करी। ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों गांवों पर जमींदारी अधिकार हासिल किए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना ठिकाना मजबूत करना शुरू किया और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। सोलह सौ 1699 की शुरुआत होते होते कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रमुख व्यापारिक बस्ती बनाया गया और 1700 के आसपास अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू किया। यह किला उनकी सुरक्षा और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे कलकत्ता अंग्रेजों का एक बड़ा व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला करके अंग्रेजों से शहर छीन लिया। इसके बाद 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी और फिर कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। लगभग 200 साल तक कलकत्ता अंग्रेजों के शासन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके बाद भी 1911 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की और कलकत्ता में व्यापार, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना रहा। तो ये तो बात थी कलकत्ता शहर की, जिसे आज के दिन पहचान मिली। साथ ही साथ इतिहास में आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी का भी जन्म हुआ, जिन्हें हम राजगुरु के नाम से जानते हैं। शिवराम हरि राजगुरु भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम और आज़ादी की भावना थी। वे बहुत साहसी, निडर और देशभक्त थे। वे भगत सिंह और सुखदेव के करीबी साथी थे। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या की योजना में भी राजगुरु शामिल थे। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय राजगुरु की उम्र केवल 22 वर्ष थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। शहीद राजगुरु का जीवन हमें देश प्रेम, साहस और त्याग की प्रेरणा देता है। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम सदैव सम्मान और श्रद्धा से याद करते हैं।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और इस डिजिटल युग में आपके और हमारे लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हो गया है, या कहें कि समाज से जुड़ने का एक और तरीका है जिसे हम अपने मोबाइल और कीपैड की उंगलियों पर टटोलते रहते हैं। तो आज बात करते हैं नई जनरेशन की, जो एक तरीके से देखा जाए 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और अपनी चीज़ें शेयर करना, पोस्ट करना, ये उनका एक हॉबी है। एक पॉजिटिव खबर कह सकते हैं, सुबह उठते ही खिड़की के पर्दे हटाना, कॉफ़ी के कप के पास किताब रखना और फिर उसकी तस्वीर लेना। ये अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की तैयारी नहीं बल्कि बदलती जीवन शैली की कहानी है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं, तो जब फ़ोटो लेंगे तो हमें अपने आसपास का माहौल भी उस फोटो के हिसाब से फोटोजेनिक बनाना होता है। तो जी हाँ, जेंजी के लिए अब ज़िंदगी को केवल जीना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपनी पसंद, मूड और वाइब के हिसाब से सजाना भी ज़रूरी हो गया है। स्टडी टेबल हो, बेडरूम हो, वर्कआउट या यात्रा, हर जगह एक खास लुक और फील ढूंढ रही है ये नई जनरेशन। जैसे बात करें कुछ बदलते युग के हैशटैग और ट्रेंड्स की, तो क्लीन गर्ल, कोजी कॉर्नर्स, संडे रीसेट जैसे ट्रेंड्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी फेमस हैं। रोज़मर्रा की साधारण गतिविधियों को भी निजी अनुभव में बदल दिया है, तो एक तरीके से अच्छा ही है। अगर हम अच्छी अच्छी फ़ोटो लेने का विचार करते हैं तो हमें अपने आसपास का जो वातावरण है, हमारा रूम हो, चाहे हमारा बेड हो, चाहे हमारी स्टडी टेबल हो, उसको हम साफ़ सुथरा रखने की प्रयत्न करते हैं। और उसमें अगर जैसे एक ही रहे पे ज़िंदगी चल रही है तो उसमें चेंज लाने के लिए अलग अलग चीज़ें भी, नई नई चीज़ें हम ट्राई करते हैं। पहले सुबह की चाय या कॉफ़ी सिर्फ दिन की शुरुआत का हिस्सा होती थी, अब कप, कोस्टर, रोशनी, बैकग्राउंड और साथ रखी किताबें तक मायने रखने लगी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से पहले तक हम अपनी चीज़ें अपने तक सीमित रखते थे। अब वो फोटोग्राफ्स जब हमारी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट होती हैं तो वो एक एस्थेटिक और वाइब की बात है। खाना भी केवल स्वाद के लिए नहीं, उसकी प्लेटिंग और प्रस्तुति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं का मानना है कि आसपास का माहौल पसंद के मुताबिक हो तो छोटे छोटे काम भी खास लगने लगते हैं। यही वजह है कि कमरे में लाइट्स, पौधे, पोस्टर, किताबें और छोटे सजावटी सामान जोड़कर उसे व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ही कह सकते हैं प्रो लेवल होती जा रही है अपने आसपास को खुशनुमा और पॉजिटिव बनाने में। कुछ जेंजी बच्चे कहते हैं कि ज़िंदगी आम तौर पर एक जैसी चलती रहती है, लेकिन उसमें अपने आइडिया से कुछ नया जोड़ देना ही एस्थेटिक है। जो चीज़ मन को खुश करे वह अपने आप सुंदर लगने लगती है। अब फ़ोटो खींचते समय भी ये सबसे पहले ध्यान रहता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं। तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से बात की जाए तो वो ये सोचते हैं कि बैकग्राउंड एस्थेटिक है या नहीं। फ़ोटो पोस्ट करते वक्त जो सॉन्ग हम लगा रहे हैं या जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से उसकी वाइब मैच हो रही है या नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है बल्कि ट्रेंड और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बदलाव करके नया लुक दिया जा सकता है। एक अच्छी और ख़ास बात यह है कि इन सभी बदलावों में हमारी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा फिजूल खर्ची भी नहीं करती है, बस अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा उलट पलट के उसको थोड़ा सा पॉजिटिव और अच्छी वाइब दे के बदल देती है। एस्थेटिक का मतलब हर चीज़ को महंगा या बिल्कुल परफेक्ट बनाना नहीं है, ऐसे और जेंजीज़ का भी मानना है। रोज़मर्रा के कामों में कुछ नया और रोचक जोड़ना उन्हें अच्छा लगता है, जैसे स्टडी टेबल वगैरह सजाना, अपने पसंद का कॉफ़ी मग लाना, किसी खूबसूरत जगह पर नए अंदाज में फोटोग्राफी या रील बनाना। छोटी छोटी चीज़ें भी मूड बदल देती हैं, अपने आसपास की चीज़ों पसंद और वाइब के मुताबिक हों तो ऐसा आजकल के बच्चे कहते हैं कि काम करने का मन भी ज़्यादा लगता है और पॉजिटिव फीलिंग आती है। उनके मुताबिक एस्थेटिक बनाना ज़िंदगी में थोड़ा रचनात्मक स्पर्श जोड़ने जैसा है। तो
हम तो इस बात से सहमत हैं कि हाँ, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा नई जनरेशन जेंजी के लैंग्वेज में कहा जाए तो एस्थेटिक बनाने के लिए अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, चीज़ों को उलट पुलट के कुछ अलग तरीके से सजाना एक नया ट्रेंड जिसे कहते हैं वो बन गया है। तो आप सबका क्या मानना है? श्रोताओं, आज 24 अगस्त है और आज के दिन को नेशनल वेफल दिवस के रूप में भी हम जानते हैं, यानी राष्ट्रीय वेफल दिवस। ये दिन स्वादिष्ट और कुरकुरे वेफल को पसंद करने वाले लोगों के लिए खास होता है। वेफल एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आटे के घोल से बनाया जाता है। इसे आमतौर पर शहद, चॉकलेट, फल, आइसक्रीम या क्रीम के साथ खाया जाता है। वेफल का इतिहास काफ़ी पुराना है माना जाता है। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी, धीरे धीरे ये दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो गया और हमारे भारत में भी इसका बहुत चलन है नई जनरेशन में। वेफल नाश्ते के साथ साथ मिठाई के रूप में भी पसंद किया जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे बनाने और सजाने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये आज का खास दिन वेफल को समर्पित है। हालांकि वेफल स्वादिष्ट होता है लेकिन इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। ताज़े फल और कम चीनी के साथ बनाया गया वेफल थोड़ा बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। राष्ट्रीय वेफल दिवस का आनंद लेते हुए हम स्वादिष्ट भोजन के साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ खुशनुमा पल भी बिता सकते हैं। और इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा करती हैं कि अब इस कार्यक्रम को विराम दें। तो चलते चलते आप सबके लिए ये मिठास भरा प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान की सारंगी वादन। राग है रामकली। आइए सुनते हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान का सारंगी वादन।

0: कुष्टिया जिले की चिट्ठी, आलेख अभिनय गोयल का है, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी, आलेख है अभिनव गोयल का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

दतिया जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं किसानों से संवाद की, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जबकि ये कार्यक्रम नई मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा किसानों और मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। किसानों के बाद अब बात करते हैं सामाजिक एकता की, जिसके तहत दतिया में संत रविदास जी की संकल्प यात्रा और माटी कलश वंदन यात्रा जारी है। 20 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा गांवों और शहरों से गुजर रही है, जिसका मकसद सामाजिक एकता और समरसता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो रही है। अब बात करते हैं प्रशासन की गतिविधियों पर। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सेवड़ा स्थित सिविल अस्पताल का बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष, एनआरसी वार्ड और ओपीडी की व्यवस्थाएं देखी। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए गए और सेवड़ा तथा इंदरगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने सेवड़ा में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सेवड़ा में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जनसुनवाई में 150 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश के बीच प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए दतिया में बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। ये कक्ष 15 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। आपदा से जुड़ी सूचना 0752-235-100 पर दी जा सकेगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें, आपदा से जुड़ी कोई भी सूचना 0752-235-100 पर दे सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बारिश के साथ मच्छरों से बचाव भी जरूरी है। विश्व मच्छर दिवस पर बीते दिनों दतिया में जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया गया। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया की। जिले में सभी पेंशन हितग्राहियों की आधार आधारित ईकेवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक से ईकेवाईसी नहीं होने पर फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काम 30 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। इंदरगढ़ के युवा उद्यमी प्रिंस सावला को उद्योग शुरू करने के लिए 80 लाख रूपये का ऋण मंजूर किया गया है। उन्हें जन कल्याण शिविर में स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रिंस उद्योग शुरू कर खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। पंचायत स्तर पर भी वहीं एक बड़ी बैठक होने वाली है। 25 अगस्त को जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मेलन जिला पंचायत के नए हॉल में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। अब रुख करते हैं दतिया की सियासत का। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6,000 वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाया, वहीं बीजेपी ने नतीजे की समीक्षा की बात कही। अब एक ऐसी पहल जिसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी हुई। दतिया के नशा मुक्ति अभियान की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे दूसरे जिलों के लिए मॉडल बताया है। इस अभियान में जागरूकता के साथ नशे के आदि लोगों के पुनर्वास पर भी जोर दिया गया। वहीं देशभक्ति के रंग में रंगी तस्वीर भी जिले से देखने को मिली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिनों गांवों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने इसमें उत्साह से हिस्सा लिया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह भी दतिया जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब एक जरूरी जानकारी। दतिया में बेहतर काम करने वाले किसानों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दतिया से मुंबई की चैत्य भूमि की यात्रा की जाएगी। ये यात्रा 15 से 18 सितम्बर तक चलेगी, जिसके लिए 24 अगस्त से 9 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और आखिर में बच्चों से जुड़ी एक खबर। जिले के लिटिल फ्लावर स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्क्रीन टाइम को सीमित रखने और तकनीक का सही इस्तेमाल करने की अपील बच्चों से की। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दतिया जिले की चिट्ठी, आलेख अभिनव गोयल का था, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार की।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से जिले की चिट्ठी।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश आई है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा, राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत, जिसे अपने सुरों से सजाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: एक बार फिर से आपका स्वागत है व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में। कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अगले गीत की फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्रेखा, ज्योति, प्रहलाद और उमेश धनेश्वरी वर्मा। साथ ही साथ इसी गीत को सुनने की फरमाइश है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा सुमन, देवाश्री और कीर्ति भारती। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है उत्तम सिंह का, फिल्म दिल तो पागल है के लिए। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: ये आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण है और प्रसारित हो रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप,

साथ ही साथ कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इस गीत को सुनने की फरमाइश है धनत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरी, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नखेलाल वर्मा। श्री गणेश अविकार्ड श्रीरामपुर से, डी अशोक कुम्हार, अविका जीविका, सानू कुम्हार और अर्चना कुम्हार। कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े और शायशा सोनवड़े। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर दिल से फिल्म का ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने और अपने शुरू से सजाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अगली फरमाइश है आप सबकी, आप सब सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सब ने, आप हैं इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बीबी अंसारी और डॉक्टर बब अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया और गोरैया चौक अम्बाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, बक्सर से राज एस डी वली अंसारी, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर, राज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश है मस्तानपुरा पूना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, अजीत नगर मलोड पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी पोती रौनकदीप कौर। आप सब सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का अपनी फरमाइश गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश है, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवणी, करिश्मा सोनवणी, अविका और विशाखा, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली खान, सबेहा अंजुमन खान, साथ ही संगीत को सुनने की फरमाइश है गांव कलाना भादरा राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव। आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, कच्चे धागे फिल्म से है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है नुसरत फ़तेह अली खान ने। इस गीत को अपनी आवाज़ के स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर यह गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है अफलातून फिल्म के लिए। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन और समीर सेन ने। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है ललित सेन और श्वेता शेट्टी ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटगे। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। अगली फरमाइश है ग्राम लोहिड़ी जिला महबूबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण शिमाली और मीला श्रीमानी। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। नई बस्ती गुंजडंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। आप सब सुनना चाहते हैं रंगीला फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है महबूब ने, महबूब आलम कोटवाल ने। संगीत है एहार रहमान का और स्वर दिए हैं हरिहरन और स्वर्णलता ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर रंगीला फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ अपना नाम और पता हमें लिख भेजें।

इस अंतिम गीत के साथ ही वर्चस्व फरमाइश का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 11 बजते हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसनरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी नॉन जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का विमोचन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, कुशल वक्ता और निपुण प्रशासक बताया। प्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है, जिसका शुभारंभ अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। देश भर में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के भगवान महाकाल की प्रतिमा को आज चांदी के मुकुट, त्रिशूल, रुद्राक्षमाला और फूलों से सजाया गया है। सीहोर में कल होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा की पूरी तैयारियां कर ली हैं, जबकि कुबेरेश्वर धाम में स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है तथा प्रशासन ने डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम और छतरपुर सहित प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जापान के आईची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
1: फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। आप लोगों से बात करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा फोन नंबर 2660902 भोपाल के बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड है 0755। श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि पहले से कम 2 फिल्मों के गाने सोच कर रखें। और उन श्रोताओं से भी हमारा निवेदन है जो श्रोता पिछले 3-4 दिनों में फोन कर चुके हैं वे कृपया फोन न लगाएं, कम से कम 1 हफ्ते का अंतराल रखें ताकि अधिक

0: एक से अधिक श्रोता हमसे जुड़ सके, हमसे बातचीत कर सके। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं।
1: हेलो
0: हेलो,
1: फोन करें गीत सुने।
0: फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: जी। हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी पुजारी बात कर रहे हैं।
0: अच्छा भगत जी, बताएं क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया है। और दीदी भोपाल में पानी गिर रहा हो?
0: नहीं, पानी तो नहीं गिर रहा, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना है। आपके यहाँ क्या हाल है? रायसेन में भी इसी तरह का होगा, ठंडा मौसम होगा।
1: में 5 बजे सुबह से गिर गया 8 बजे तक। धानों की गड़ाइयां मरेंगे, सबरी भर आ गए।
0: अरे वाह, बढ़िया है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी पानी तो दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे।
1: और फिर एक नंबर मौसम है। और दीदी सबरी बहनों है रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अब हम फोन जन्माष्टमी पे लगे हैं आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश में।
0: जी धन्यवाद। चलिए बताएं बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है फरिश्ते।
0: फरिश्ते
1: तो गाना के बोल है कितना सुंदर।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ना मांगी कोई दुआ, ना कोई गुजारिश की, ना कोई फरियाद, ना कोई नुमाइश की। जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो आपकी खुशी की ख्वाहिश थी।
0: बहुत बढ़िया, आप अपना परिचय भी दे
1: मैं
0: दें।
1: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मंसूरी जी,
1: जी कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया है, आप अपने हालचाल बताएं।
1: जी हम भी ठीक है मैडम।
0: अच्छा, क्या चल रहा है अभी आपके इंदौर में?
1: बस अभी तो मैडम यह ईद मिलादुन नबी आ रही थी, इसकी तैयारियां चल रही हैं। बहुत गलियां सज रही है हमारे यहाँ।
0: अच्छा, क्या तैयारियां करते हैं आप घर में, क्या करते हैं इस त्योहार
1: घर
0: पे?
1: में तो सब साफ सफाई हो जाती है, और जो लाइटिंग का काम रहता है, इसे घर को सजाया जाता है लाइट से, और गली मोहल्ले को भी लाइट से सजाया जाता है।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: तैयारियां जोरों शोरों पर है।
1: हाँ, बच्चों की बहुत धूमधाम रहती है इसमें।
0: और कुछ इस त्योहार से जुड़ा हुआ कुछ बताना चाहें
1: हाँ,
0: तो?
1: जैसे मैं मिठाई बांटी जाती है, सब जुलूस निकलता है इसमें, और जिसको जो बांटना रहता है, मीठा खीर है वगैरह, जो भी बांटना रहता है सब बांटते हैं अपने तरफ से।
0: चलिए, मतलब स्वयं भी खुश होते हैं और अपने आसपास सभी को खुश
1: हाँ,
0: रखने का
1: सभी को खुश
0: प्रयास
1: रखते
0: करते
1: हैं और
0: हैं।
1: सभी को मिठाई बांटते हैं
0: जी,
1: मैडम।
0: सारे तीज त्योहार यही संदेश देते हैं हमें। फोन
1: जी
0: करने
1: जी
0: के लिए धन्यवाद, लेकिन उससे पहले अपनी पसंद बता दें।
1: मैडम, ये बिजली और तूफान का गाना है, मोहम्मद अजीज की आवाज में।
0: कौन सा?
1: कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर।
0: जी, इसके अलावा एक और बता दें।
1: जी अगर ये नहीं मिले तो फिर बजरंगी भाईजान का सुना दीजिएगा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद।
0: बजरंगी भाईजान का
1: जी
0: बिल्कुल।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से। भागचंद
0: गंज बासोदा से क्या करते हैं वहाँ?
1: साहू,
0: जी, नाम सुन लिया आपका। बताएं क्या
1: बिल्कुल
0: करते हैं
1: दीदी,
0: वहाँ?
1: कैसी हैं आप?
0: बस बढ़िया हैं। आप वहाँ पे क्या करते हैं?
1: हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं दीदी, आइए गंज वासोदा आइए। बिल्कुल
0: अरे वाह, तो इसके पानी
1: बिल्कुल
0: में ऐसा
1: आइए
0: क्या डालते हैं कि लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं पानीपुरी में?
1: दीदी। वो तो क्या है, अपने हिसाब से पानी बनाया जाता है, जो श्रोताओं की फरमाइश रहती है कि हमें पानी अच्छा लगता है वही ग्राहका जाता है अपने पास।
0: बिल्कुल
1: ये है
0: बिल्कुल
1: कि भाई क्वालिटी होने चाहिए, क्वालिटी
0: जी, क्वालिटी हो,
1: आजकल क्वालिटी ही देखता है आदमी।
0: मतलब आप बताना नहीं चाह रहे कि क्या क्या डालते हैं
1: नहीं, ऐसा कुछ
0: मुझे
1: नहीं है,
0: तो
1: वहां में बहुत चीजें तो बहुत सारी डलती हैं।
0: देखिए, आपने
1: हाँ
0: गोलमाल करके बातें मतलब खत्म करना चाह रहे हैं कि नहीं बताना है क्या डालते हैं खास
1: नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं
0: जी चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद का गाना भी बता दें।
1: दीदी। और मौसम कैसा है भोपाल में अभी? बिल्कुल
0: मौसम सुहावना कह सकते हैं, बट बारिश तो हो नहीं रही, ठंडा हो गया मौसम।
1: हाँ, हो गया है थोड़ा सा, यहाँ वासुदेव में धूप भी निकली हुई है आज तो। कल तो पानी गिरा है, शाम के टाइम पानी गिर रहा था।
0: हाँ, कल थोड़ा पानी था लेकिन आज तो अभी तो सूखा पड़ा है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल पानी। हालांकि बहुत दिन से यहाँ आया नहीं है, 5-6 दिन से ऐसा पानी नहीं
1: सही
0: आया
1: बात
0: कि
1: है।
0: हाँ आप कह सकें कि बारिश का मौसम है। सावन जाने को है हालांकि।

0: चलें बताएं।
1: गाना दीदी हमें सुनवा देना, सिर्फ तुम की कव्वाली, एक मुलाकात जरूरी है सनम।
0: बहुत पसंद है लगता है ये कव्वाली आपको।
1: नहीं हमने वो देखी है ना।
0: तो एक ही पिक्चर देखी है आपने अभी तक क्या?
1: हाँ बिल्कुल देखी है ना, सिर्फ तुम वाली पिक्चर हम देख रहे थे ना कल।
0: अच्छा, कल ही देखी है। ठीक
1: हाँ
0: ठीक
1: हाँ
0: ठीक
1: तो
0: ठीक
1: क्या है उसमें जो स्टोरी है बहुत अच्छी है और गीत भी अच्छे हैं सारे।
0: कुछ अलग ही स्टोरी है उसकी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्यों नहीं है, अलग है उसमें।
0: जी चलिए, बिल्कुल सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी, कल्ली दुबे बोल रहा हूँ दीदी।
0: कहाँ से?
1: मैं ग्राम चताहरी से बोल रहा था दीदी। ग्वालियर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, कब से रह रहे हैं वहाँ?
1: मेरे को दीदी कम से कम नहीं तो 15-16 साल हो चुकी हैं दीदी।
0: घर कब जाते हैं आप? एक आध महीने में या
1: नहीं नहीं
0: कुछ?
1: दीदी, मैं घर पर जाता हूँ। जैसे कोई त्योहार आता है तो आता हूँ, नहीं वैसे नहीं आता मैं।
0: तो अभी
1: हाँ
0: राखी पे
1: दीदी,
0: जाएंगे?
1: हाँ रक्षाबंधन पर अभी घर पे ही आया हूँ मैं। तो
0: अच्छा।
1: भैया गाय सेवक, गाय की सेवा करते हैं तो वो गाय चराने के लिए खुले गए। मैंने सोचा, मैंने कही आज मैं कॉल लगा करके बात कर लेता हूँ।
0: तो ग्वालियर में भी सुनते हैं आप हमारा कार्यक्रम?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ ना।
0: चले,
1: हाँ दीदी
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं तो ऐसे?
1: दीदी, मैं आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ ज्यादा
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के?
1: अधिकतर। तो जी फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम।
0: अच्छा, चलिए तो पसंद भी बता दें अब।
1: दीदी आज मिली वो एक कब तक उनका गीत है एक।
0: कब तक चुप रहूंगी,
1: हाँ
0: ये फिल्म का नाम है ना एक? हाँ,
1: इसका कोई सा भी गीत सुनवा देना दीदी आप।
0: कोई सा भी गीत, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको कोई सा भी गीत। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: हेलो,
0: मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्ते।
1: मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: सुमित जैन जी, कितने दिनों बाद फोन लगा रहे हैं?
1: कम से कम 15-20-12-14 दिन हो गए करीब
0: पक्के में?
1: लगभग।
0: चलिए, हम लोग क्योंकि अब सारे श्रोता हमें रट चुके हैं कि कौन कौन बात करते हैं, कितने दिनों में बात करते हैं, तो
1: धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 14-15 दिन बाद फोन लगा रहे हैं।
1: जी
0: हाँ, ऐसे जागरूक श्रोताओं की हमें ज़रूरत है। चलिए
1: जी
0: बताएं अपने कुछ हालचाल।
1: क्या आपका विषय कुछ है क्या?
0: नहीं, आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है।
1: अच्छा, फोन करेंगी सुने। जी, कार्यक्रम बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं आप लोग।
0: जी
1: बात हमारी गीत आपके बात हमारी में बहुत अच्छा रहता मैडम, बहुत अच्छी कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके
0: हाँ,
1: द्वारा।
0: उद्देश्य हम लोग का यही रहता है कि अलग अलग जब विषय रहते हैं तो उस विषय के माध्यम से बहुत से श्रोता जो हैं वो उन विषयों पे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। कई बार कुछ समस्याओं पर हम लोग बात करते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण भी कई श्रोता बहुत अच्छा बताते हैं, तो ये एक जरिया है, मीडिया एक जरिया होता है श्रोताओं से जुड़ने का, उन तक पहुँचने का।
1: जी, बहुत
0: जी
1: बढ़िया। जी,
0: बताएं।
1: मुझे तो रोटी कपड़ा और मकान का सोना दीजिए, महंगाई मार गई करके, चक्कर
0: महंगाई तो बहुत मार गई, सही कह रहे हैं आप,
1: भी महंगी हो गई है।
0: शक्कर बहुत महंगी हो गई।
1: मुट्ठी भर पैसा लेकर थैला भर चक्कर लाती थी, आज
0: हाँ
1: थैला भर पैसे ले जाते मुट्ठी भर चक्कर लाने की स्थिति हो गई है।
0: जी, रोजमर्रा की चीज है ये तो, जबकि।
1: जी जी जी
0: धन्यवाद,
1: जी
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

से लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे।

0: हेलो
1: मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। अपना नाम
1: मैम। फोन करें गीत सुने। नहीं
0: जी। फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आपने फोन किया है
1: नेपाल पुलिस सागर से तिलक राणा बोल रहा था
0: तिलक राणा जी।
1: जी।
0: जी सागर में इन दिनों आप क्या करते हैं?
1: मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से एलडीसी के पद पे रिटायर्ड हुआ जी।
0: तो अब ये जो आप ऑफिस में अपना समय देते थे
1: जी जी
0: 6-7 घंटे, तो अब वो कैसे समय निकालते हैं?
1: रेडियो वगैरह सुनते हैं और अपने मनोरंजन, और सवेरे के वक्त में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, कुछ योगा वोगा कर लेते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हैं
0: स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं
1: जी।
0: जी। और कुछ घर के कामकाज?
1: हाँ, घर के काम काज तो लगा रहता है तो वो करते ही रहते हैं
0: वो जिम्मेदारी कभी खत्म
1: हाँ
0: नहीं
1: जी।
0: होती। जो ऐसी
1: हाँ जी,
0: जिम्मेदारी
1: जिम्मेदारी
0: है
1: तो खत्म होती नहीं है इसमें
0: बिल्कुल बिल्कुल। रिटायरमेंट ऑफिस से भले मिल जाए लेकिन घर से किसी को नहीं मिलता। आज क्या गीत सुनेंगे आप?
1: मैम। आज मुझे मोम की गुड़िया फिल्म का गीत सुनना है,
0: बोल बताएं।
1: जिसके बोल हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी ने गाया है इस गीत को।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने, नाम बताएं अपना।
1: हाँ, गोविंद जलोदिया खाते गाँव।
0: गोविंद जलोदिया खाते गाँव। चलिए अपनी पसंद भी बता दें।
1: मेरी पसंद है सर, बन मौजी का गाना है सर, वही है लता मंगेशकर की आवाज में, तो तुम संग नैन मिला के हार गई सही।
0: बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। और कुछ अपने बारे में बताना चाहें?
1: मेरा बस ये ज्यादातर यही काम है, बस मतलब रेडियो वगैरह सुनना, जो है फरमाइश वगैरह देना।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्ते,
1: आप किससे बात कर रही हैं आज? मेरी
0: मैं बोल रही हूँ छाया पाठक, अपना
1: मैं
0: परिचय भी
1: पाठक,
0: दें। जी
1: सवाई साल पूरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव।
0: जी सतीश श्रीवास्तव जी,
1: अरे आपको तो मैंने क्या आता था, 10:30 बजे आता ना गीत सागर, खूब सुना आपको तो मैंने, सामने भरोसा।
0: भरोसा फिल्म का गीत।
1: हाँ गीत के बोले ये झुके झुके नैना, गायक कलाकार मोहम्मद रफी साहब है और गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण साहब ने, संगीत दिया रवि साहब ने, कलाकार थे गुरुदत्त आशा पांडे।
0: चलिए,
1: दीदी
0: आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, वहाँ पे आप क्या करते हैं?
1: मैं आकाशवाणी स्टूडियो शेड्यूल पर मैडम वार्ताकार हूँ।
0: वार्ताकार हैं शेड्यूल में
1: जी मैडम।
0: आप, इसके अलावा भी तो कुछ करते होंगे।
1: जी स्वयं की खेती करते हैं मैडम, किसान भी हैं हम लोग।
0: अच्छा, किसान भी हैं आप। तो वार्ता आपकी किस विषय पर होती है? कुछ कृषि से संबंधित ही?
1: बिल्कुल मैडम, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब एक
0: सामुदायिक स्वास्थ्य
1: केंद्र है।
0: केंद्र।
1: जी
0: जी जी
1: जी
0: हाँ।
1: बिल्कुल मैडम, तो अपने आम विषयों पर हम लोग चर्चाएं करते हैं और जो ग्रामीण भाषा का आम बोलचाल पर उसमें वार्ता कर पाता हूँ मैडम। जी
0: उस भाषा में कौन सी बोली बोलते हैं आप?
1: ये बघेली भाषा का प्रयोग करते हैं
0: बघेली
1: मैडम।
0: भाषा बोलते हैं।
1: हाँ,
0: बघेली
1: तो अपने
0: भाषा में
1: वाले से
0: चलिए आप अपनी पसंद बता दें।
1: अपना से एक अपील करे का चाहिए था हम, काहे कि ये समय बरसात के मौसम आए, तो एक ठीक गाना सुने कर रहे अपने ये कार्यक्रम से, और बहुत प्यारा सा गीत आए बलम केसरिया।
0: हमें आपकी बोली सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। बहुत मीठी बोली
1: बिल्कुल
0: है
1: मैडम, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण जो आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, DTH और OTTP के माध्यम से प्रसारण जाते हैं, बहुत ही साफ स्पष्ट शैली और आपकी मधुर वाणी पहुंचती है सीधे दिल तक।
0: चलिए एक बार गाने के बोल फिर से बता दें हमें।
1: ओ बलम।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे
1: हाँ
0: इत्सु ने।
1: जी, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बताएं नाम अपना,
1: नमस्ते, देवीदास वाड़ीले।
0: कैसे हैं, स्वास्थ्य
1: हाँ
0: वगैरह
1: सब
0: सब
1: बढ़िया है,
0: बढ़िया?
1: मस्त है, बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है।
0: स्वस्थ हैं, मस्त हैं
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल यही रहना है हमें। बारिश में
1: हाँ
0: थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
1: हाँ मैडम
0: है ना, मच्छरों
1: जी।
0: गंदगी इन सब से दूर रहें। ज़रा प्रयास करें कि
1: हाँ
0: हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें,
1: जी
0: स्वयं भी
1: मैडम जी।
0: करें, लोगों को भी कहें।
1: हाँ
0: बताएं आज
1: हाँ
0: कौन सा
1: हाँ
0: गीत सुनेंगे?
1: जी मैडम, जाए मुझे गीत सुनाए वो, आज मैं ऊपर आसमानी के।
0: फोन करने के लिए
1: हाँ
0: धन्यवाद,
1: ओके
0: नमस्कार।
1: मैडम, थैंक यू।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने यही समाप्त होता है। जिन श्रोताओं ने हमसे बात की उनका धन्यवाद। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को, कार्यक्रम से नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश को वर्ष 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। सांची के उपडाकघर का आधुनिकीकरण और लुक एंड फील सुधारने का काम पूरा कर लिया गया है। आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। देश भर में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को श्रद्धालु शिवालयों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के भगवान महाकाल की प्रतिमा को आज विशेष रूप से चांदी के मुकुट, त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और फूलों से सजाया गया है। सीहोर में कल होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि कुबेरेश्वर धाम में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासन ने डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम और छतरपुर सहित 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और जापान के आईची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाने वाले एशियाई खेलों में मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए हमारी ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा छाबड़ा राजस्थान से, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है सोनू निगम, अलका याग्निक की, गीतकार है जावेद अख्तर, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, जिसके लिए आवाज़ है इस प्यारे से गीत की, श्रेया घोषाल। और श्रेया घोषाल सोनू महापात्रा की, गीतकार हैं कुमार, संगीत है विशाल शेखर का, और ये फिल्म है आई हेट लव स्टोरी। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश किरण प्रज्वल डेरे, और इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, गणेश मराठा, कार्तिक मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश भेजी है उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर और बदलापुर से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और नागपुर से ही वैशाली, शैलेश, सुमित गवाणकर, ध्वनि और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धा नंदार्य, अभय नंदार्य, परमानंदार्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और ये साथी हैं। राजस्थान कनाई से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फना का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है सोनू निगम, सुनधि चौहान की, गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र, सन्मति पंचोलिया। बाड़मेर राजस्थान से हमारे ये जो साथी हैं उनके नाम हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशी मनवर, बेबी प्रियांशी। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है थ्री इडियट्स का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है सोनू निगम, श्रेया घोषाल की। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: और अब सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा एवं किलोल पार्क चौराहा तथा अन्य इन चौराहों के मध्य आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अतः आम नागरिकों से अपील है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया की छठी कड़ी।

0: अब तक की कहानी ये है, जमुनिया और उसका पति रतन पट्टे पर जमीन पाकर खुश थे। अपनी मेहनत से उन्होंने अच्छी फसल उगाई थी, पर धूर्त दीवान और रतन के भाई करण ने रतन को 10,000 रुपए के कर्ज को 25,000 कर दिया। रतन को इस बात से बड़ा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। उसी समय गर्भवती जमुनिया ने बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद
1: देखो जमुनिया, रतन भैया रहे नहीं, सो अब तुम भी कोई ठाव ठिकाना ढूंढो। मेरे बस का कमाना खिलाना नहीं होगा ये, और जो फसल काट के लाया हूं उसमें से हिस्से की आस तो करना भी मत। हाँ, दो चार टाइम की बात हो तो चलो ठीक है, खिला पिला देंगे।
2: अभी मुझ पर आफत आन पड़ी है, बेबस हूँ। नहीं तो जमुनिया कमाकर तुम्हारे परिवार को भी पाल रही थी, पर ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँ?
1: वो सब मैं नहीं जानता, पर यहाँ से तुम खाली करो, दो चार दिन की मोहलत देता हूँ बस।
3: अरे का कह रहा रे करण, हैं? अरे ऐसी हालत में तो दुश्मन भी मदद कर ही न देता है।
1: ए, सुनो, तुम तो हमारे बीच में पड़ो ही मत।
3: अरे काहे नहीं पड़े, देखा नहीं जा रहा है, यही से न कह रहे हैं?
2: रहने दो अम्मा, ये आपको भी कुछ कह देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना जुलुम तो कोई पराए पर भी नहीं करता, ऐसे कैसे चले जाएं? अपना गांव है, पंच है, पंचायत बुलाएंगे तब फैसला होगा।
1: अरे जाजा, बुला ले पंचायत, देखता हूँ कौन आता है।
2: दुनिया से इंसाफ उठ नहीं गया है करण भैया, कोई तो आएगा।
1: अरे जाजा जा, बड़ी आई पंचायत बुलाने वाली। क्या
4: देखो इंदल भैया, जमुनिया पंचायत बुलाने वाली है, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना है, और आगे जो तुम कहोगे मैं करूंगा, पर इस जमुनिया को सबक सिखाना है।
5: अरे ठीक है भैया, ठीक है,
4: पर हाँ, वो भैया का बड़ा बेटा गोलू भी मुझे चाहिए, बड़ा होकर बड़ा काम आएगा।
5: अरे तू बड़ा शातिर है रे, चल सब ठीक हो जाएगा। चलो
0: इसी तरह प्रलोभन देकर सभी पांचों पंचों को करण ने अपनी ओर कर लिया और फिर हुई पंचायत।
1: देखो जमुनिया, अपना टीन टप्पर संभाल और निकल जाए यहां से।
2: देखो पंचो, आप खुद सोचो, ऐसी हालत में मैं कहां जाऊंगी? पर चलो, अलग होना है तो खेत का आधा हिस्सा मुझे दे दो, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी।
1: ए, ये सपना तो देखना ही मत, काहे का हिस्सा है, कहां का खेत?
2: ए, सबने देखा है कि उस बंजर जमीन को मेरे मर्द ने अपने पसीने से खेती करने लायक बनाया है। हाँ
5: देखो जमुनिया, रतन तुम्हारा मरद बाद में बना, पहले वो करण का भाई था, क्यों बंचो?
6: हाँ,
5: सही बात है, सही बात है।
2: अरे ये क्या हो रहा है?
1: तुम निकलो यहाँ से, उठाओ अपनी बेटी को और निकलो यहाँ से।
2: तो क्या लोगे?
1: तो क्या इसे अपना बेटा समझती हो?
2: समझती नहीं हूँ, अपनी कोख से पैदा किया है इसे।
5: अरे तुम दोनों चुप रहो, इसका फैसला हम किए देते हैं। करण, तू बुला अपनी औरत को, बच्चे को जहाँ खड़ा करो बीच में, एक तरफ से जमुनिया इस बच्चे को खींचेगी और दूसरी ओर से करण की औरत, जो खींच लेगा बच्चा उसका। ठीक बात है ना भाई? अपने आप फैसला हो जाएगा। हाँ
2: आजा गोलू, आजा गोलू बेटा।
3: आ गया मेरा बेटा, आ गया। ए, ये क्या किया जमुनिया? अरे अपने बेटे को तूने छोड़ दिया।
2: कितने जालिम है ये, देख नहीं रही थी कितनी बेरहमी से करण की औरत गोलू को खींच रही थी, कहीं उसका हाथ टूट जाता तो।
5: हाँ, अब होगा इंसाफ। आधी जमीन करण की और आधी इस लड़के की, और लड़का जब करण का ही हो गया तो जमीन उसकी भी करण की हो गई।
1: चलो पंचो, हो गया फैसला
5: भैया, हो गया फैसला, हो गया फैसला, खत्म करो पंचायत।
1: इंदल भैया भी कमाल करते हैं, झट से कर दिया फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी।
3: ये तो है।

0: कौन है वहां? जवाब तो दो, कौन है? अरे कौन हो बेटी तुम? कहां जाना है?
1: पता नहीं बाबा।
0: है? कौन गांव की हो?
1: पता नहीं।
0: ये तुम्हारी बिटिया है? अच्छा, ससुराल में घर वालों से झगड़ा हुआ होगा, सो बिटिया को लेकर चली आई।
1: घर वाला होता तो तर तर कहाँ है भटकते बाबा।
0: अंदर आ जाओ बिटिया, आ जाओ, घबराओ मत, बाहर बेकार में भीग रही हो। अरे बेटी, ये कुछ पैसे हैं, रख लो इन्हें और अपने माँ बाप के पास चली जाना, ना होगा तो मैं कल ही तुम्हें पहुंचाऊंगा।
1: माँ? माँ नहीं है, भैया है, पर वो भी अंधे बाप को ही बोझ समझता है, तो मैं कहाँ रहूंगी बाबा?
0: अरे तो ऐसे कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी बेटी?
1: सुना है हमारे गांव के दीवान जी का भट्टा है यहाँ, सो वहीं मजूरी करके गुजर बसर कर लेंगे, चार पैसे कमाकर बिटिया को पढ़ाऊंगी ताकि इसकी हालत मेरे जैसी ना हो।
0: बड़ी प्यारी बच्ची है, इसका नाम कुछ रखा है? अरे अभी तो बहुत छोटी है।
1: इसके बाप ने इसके पैदा होने से पहले ही नाम रख दिया था, गोली। ऐ जन्मी, वो चला गया।
0: अरे, तो हो जाओ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, इसका नाम चिरैया रख दो, खूब डाली डाली चहकेगी। और हाँ, हम दीवान और उसके आदमियों को जानते हैं, वो लोग नेक नियत के नहीं हैं। हमरी मानो तो उसके यहां नौकरी ना करो। अरे क्या सोचने लगी?
1: बाबा, हम अपना हक लेने से डरते क्यों हैं?
0: काहे कि हम गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना। अच्छा सुनो बिटिया, दो चार दिन की बात तो है नहीं। ए बेटा, बिटिया को लेकर कहाँ कहाँ भटकोगी? हमारी एक झोपड़ी खाली पड़ी है, उसमें रह जाओ, हमें कोनो एतराज नहीं है।
1: हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस रोजी रोटी मिल जाए इतना ही।
0: अरे बिटिया, हमें बांस की टोकरी पंखा बनाना आता है, सो तुम्हें सिखा देंगे, हाट बाजार में आराम से बिक जाएगा। जैसे मेरा पेट भर रहा है ना, तुम दोनों का भी भर जाएगा। ला बिटिया को गोद में मैं ले लेता हूँ, ला दे, अब तू थक गई होगी ना। ले ले ले ले ले ले ले, बड़ी सुंदर बिटिया है।

0: लगभग 5 साल बाद।
1: मायने, आज भी इतने सूपे और टोकरी बच गए?
2: कोई बात नहीं चिरैया बेटी, अगले हाट में बिक जाएंगे। सुन, देख तो झुल्लन बाबा कहाँ है, बुला ला, खाने का वक्त हो रहा है।
1: ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ।
2: ई का पीस रहे हो बबुआ?
3: बुढ़िया ताई की खांसी के लिए दवाई बना रहे हैं।
2: अरे वाह, बड़ा जानकार है रे तू। कब से पिला रहा है जी दवाई?
4: अरे 3 साल से भोग रहे हैं, जही दवाई पीते पीते तो।
2: अरे तुम तो कमजोर हो गई हो अम्मा। चिंता ना करो अम्मा, सोमवार को जौनपुर का हाट लगेगा। हाँ, वहाँ शहर से डॉक्टर आते हैं, हम तुम्हें ले चलेंगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, चिंता ना करो बिल्कुल। ठीक है?
4: ठीक है बेटी, ठीक है।
2: का हो गया भैया, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो?
3: अरे अरे, मुकुंद की जोरू दर्द से तड़प रही है, जचकी से सो दाई को बुलाने जा रहे हैं।
2: तो मैं मुकुंद भैया के घर जाती हूँ, तू दाई को बुला के ले आ।
3: हाँ हाँ।

0: हिम्मत रखो बेटिया, हिम्मत हिम्मत रख बस। अरे बस बेटिया बस, सब ठीक हो जाए।
1: अरे ये क्या कर रहे हो सब, हाँ घेर कर खड़े हो, हटो हटो चलो अलग हटो।
0: अरे सबर,
1: हवा आने दो। ये तुलसी बेटा, ए सुन इधर आ, जा जा जल्दी जाकर थोड़ा गर्म पानी कर लो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हाँ जल्दी कर,
1: तनिक सबर करो शारदा, तनिक सबर करो।
0: हाँ हाँ सबर कर बेटा।
2: बाबा मिट्टी का तेल नहीं है, चूल्हा जलाना था, पानी गर्म करना है।
3: इतनी जल्दी मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊंगा, कुछ लकड़ ले आता हूँ उस पर गर्म कर लो।
1: अरे भैया ना हो तो इसे अस्पताल ले चलो, हालत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल।
3: ना आसान नहीं जमुनिया बहन, अस्पताल अस्पताल यहाँ से 12 कोस दूर है, तहसील तहसील ले जाएगी पड़ी।
1: इधर शारदा बहन की जान मुसीबत में है और आप लोग ताश खेलने में लगे हैं, ए नहीं कि कुछ मदद करें। हाँ
4: ये तो औरतों का काम है,
5: और क्या
4: हम क्या मदद करें। ये ले भाई मेरा चिड़ी का इक्का।
5: अरे घबराओ मत जमुनिया बहन। अरे इस काम में बच्चे ऐसे ही रोते धोते पैदा होते हैं, हम भी तो हुए हैं। अरे कोई अस्पताल में नहीं पैदा हुए। अरे चलो उठो रे, सारे खेल का मजा खराब कर दिया। हाँ बोलो बोलो क्या मदद करें।
4: चलो चलो चलो चलो
5: आ गई।
1: कक्का तुम्हारी बात नहीं डालेंगे दीवान जी, तनिक मिन्नत करके ले आओ ना उनका ट्रैक्टर, उसी से ले चलेंगे।

0: क्या बात है, क्यों आए हो जुल्लन?
1: शारदा बिटिया पेट से है, जज की हो नहीं पा रही है, सो उसे अस्पताल ले जाना था।
0: तो ट्रैक्टर चाहिए तो ले जाओ ना ट्रैक्टर। अरे जाओ भाई, जल्दी करो, ट्रैक्टर निकलवाओ और फटाफट अस्पताल ले जाने की तैयारी करो। ऐ भी रखो थोड़ी सी रकम, वक्त जरूरत पड़ सकती है ना। अरे कुदरत तुम्हें 10 महीने का मौका देती है तो उसके लिए तैयार क्यों नहीं रहते तुम लोग? जाओ जल्दी जाओ।
2: अरे अरे वो दाई तो दूसरे गांव गई है जज की कराने, पर झुल्लन दद्दा शायद ट्रैक्टर लेके आ ही रहे होंगे। जल्दी करो, पूरी तैयारी रखो भैया।
3: आ गया ट्रैक्टर। भैया सुनो, तनिक इधर लगा लो, शारदा बहन को बिठाना है ना।
4: गड़बड़ हो गई है, डीजल तो खत्म हो गया है।
3: क्या कह रहे हो भैया, शहर भी नहीं जा पाएंगे।
4: माफ करना, मैं दीवान जी से पूछ कर आता हूँ, थोड़ा बहुत होगा तो डाल दूंगा। अच्छा मैं भी आया।
0: शाबाश लौट आए। अब कोई आए तो कह देना डीजल एक बूंद भी नहीं है, अब कल ही कुछ हो पाएगा।
5: जी मालिक।
0: जाओ ट्रैक्टर खड़ा कर दो उधर।
5: जी मालिक। ठीक है मालिक।
0: क्या सोच रहा है, रुक क्यों गया? तेरी लुगाई को बच्चा हो रहा है क्या?
5: अरे नहीं मालिक, हमें क्या, पर आपने तरकीब अच्छी निकाली मालिक, अच्छे के अच्छे बने रहे और काम भी नहीं किया।
0: करना पड़ता है भैया, सब करना पड़ता है।
3: अरे शारदा, बोलो कुछ।
6: चले कुछ नहीं बोलेगी जीजी।
3: भगवान के पास चली गई बेटा।
6: चाची, जिनके बच्चा होता है क्या वो ऐसे ही भगवान के पास चले जाते हैं?
3: नहीं बेटा, अब इस गांव में कोई शारदा ऐसे नहीं मरेगी। धीरज धर बेटा, अभी तो यही काम आएगा। चुप हो जा, चुप हो जा।

0: आवे जाए के लिए सड़क नहीं, बच्चन को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं, कम से कम ये जरूरी चीजें तो होनी चाहिए ना।
1: काहे को सपना दिखाए रही हो जमुनिया?
0: सपना नहीं है कक्का, ये हमारा हक है।
1: अरे अनपढ़ होकर भी पढ़े लिखे जैसी बातें कर रही हो। अरे बेटा हम अंगूठा छाप हैं, ये ना भूलो।
0: कक्का हम पढ़ेंगे, जीवन बार बार नहीं मिलता। बस ये बताओ कक्का कि हमें पढ़ाएगा कौन?
1: सचमुच जमुनिया तुम पढ़ोगी?
0: मन से बोल रही हूं कक्का, मुझे देखना है, जानना है कि कागज कलम में कौन सा मंत्र है जो आदमी को इतनी ताकत दे देता है।
1: जब ठान ही ली है तो ले चलेंगे बिटिया।

0: अरे अरे अरे चुल्लन, आओ आओ भाई, आज कैसे इस गुरुजी की याद आ गई है? कहां से रास्ता भूल गए?
1: अरे गुरुजी, ऐसा मत कहिए, रास्ता भूले नहीं है बल्कि रास्ता खोजने आए। ये अपनी जमुनिया है, जमुनिया।
2: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम।
1: इसे अब पढ़ने की धुन सवार हुई है ई उम्र में।
0: अरे भाई, अब पढ़ने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में?
1: अरे गांव की चिंता सता रही है, गांव बदलना चाहती है गुरु।
0: अरे वाह, अरे बड़ी खुशी की बात है भैया ये तो। बेटी, इसके लिए तुम्हें पहले अपने देश की पुरानी तस्वीर देखना पड़ेगी, फिर समझनी पड़ेगी। सोच लो।
3: जी लो, पानी पी लो। अरे जे तो शुरू ही हो गए, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए। हाँ
0: देवी जी, ये तो नए भोर की शुरुआत है, तुम देखना गांव की तस्वीर बदलेगी।
3: हाँ जरूर बदलेगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना जमुनिया धारावाहिक की छठी कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश को 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए सरकार आज भोपाल में केंद्रीय और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ भोपाल में वन इंस्टीट्यूट वन प्रोमिस कॉन्क्लेव करेगी। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। सांची के उप डाकघर का आधुनिकीकरण और लुक एंड फील सुधारने का काम पूरा कर लिया गया है। आज शाम करीब 5 बजे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के भगवान महाकाल की प्रतिमा को चांदी के मुकुट, त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और फूलों से सजाया गया। सीहोर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुबेरेश्वर धाम में भी स्वास्थ्य और सेवाओं की व्यवस्था की गई। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रदेश में मॉनसून टर्फ, चक्रवाती सिस्टम और निम्न दाब क्षेत्र के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम और छतरपुर सहित 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिसा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी महक गुप्ता, हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़ी ढेर सारी काम की बातें और ताज़ा जानकारी लेकर। श्रोताओं कहते हैं कि हमारी आँखें अनमोल हैं, ये हमारे लिए इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एक अनूठा झरोका है। आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से अपनी आँखों की सेहत, नेत्रदान के महादान और आधुनिक तकनीक के उस चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो हमारी आँखों की देखभाल के तरीके को बदल रहा है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के पहले सप्ताह तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो चलिए, इस साल हम मनाते हैं कल से 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में फैले भ्रम दूर करना है। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया यानी आंखों की पुतली के खराबी के कारण देख नहीं पाते। विज्ञान की मदद से ऐसे लोगों को कॉर्निया प्रतिरोपण के जरिए दोबारा रोशनी दी जा सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम और आप नेत्रदान के संकल्प के लिए आगे आएं। नेत्रदान के बारे में कई गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि

उम्र दराज लोग जिन्हें चश्मा लगा हो वो नेत्रदान नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई तो ये है कि हर उम्र का व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसे चश्मा लगा हो या मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवा चुके हों, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान मृत्यु के बाद 6 घंटे के भीतर भीतर किया जाता है और इस प्रक्रिया में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इससे चेहरे पर कोई बदलाव या विकृति नहीं आती है और ये प्रक्रिया पूरी तरह सम्मानजनक और मुफ्त होती है। अगर हम अपने जीवन काल में नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो मृत्यु के बाद भी हमारी आंखों से कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है। क्या ये बात किसी भी मोक्ष की बहस से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या नेत्र बैंक जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो श्रोताओं, चलिए हम और आप जाते जाते भी किसी की दुनिया रोशन कर जाएं। आइए नेत्रदान का संकल्प लेकर नया कल बनाएं।

0: श्रोताओं, आज हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, फोन और लैपटॉप पर अपनी आय के लिए भी निर्भर हैं। ऐसे में ये और जरूरी हो गया है कि हम अपनी आंखों की देखभाल पर ध्यान दें। इसी विषय पर हमें जागरूक करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रमनानी। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता डॉक्टर विनीता रमनानी के साथ।
1: श्रोताओं, हमारे शरीर में आंखें वो नायाब तोहफा है जिससे हम सारी दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सबकी पहचान हमारी आंखें हमें कराती हैं। लेकिन जब आंखों में कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो बहुत समस्याएं होती हैं। क्यों होती हैं आंखों की बीमारियां, इसके कारण क्या है, किस तरह हम इनसे बच सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विनीता रमनानी को। डॉक्टर विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आंखों में किस तरह की परेशानियां होती हैं।
2: आंखें जो हैं हमारा देखने का काम करती है, तो अगर नजर कम हो जाए या फिर नजर पूरी तरीके से चली जाए यानी ब्लाइंडनेस हो जाए, और उसके अलावा फिर आंखों का स्ट्रक्चर यानी कि बनावट ही खराब हो जाए जिसमें कि आपकी सुंदरता कहीं ना कहीं खराब हो जाए।
1: मैम, किस वजह से ब्लाइंडनेस या अंधत्व हो जाती है, और जो जन्म से ही ब्लाइंड है या किसी वजह से किन्हीं कारणों से उन्हें अंधत्व आ गया है, तो ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाता है?
2: सबसे ज्यादा अंधत्व का जो कारण है वो है बच्चों में कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज यानी कि उनकी पैदाइशें या तो आंखें छोटी बन जाए या उसकी बनावट में कुछ खराबी हो जाए, जिसको हम माइक्रो ऑप्थेल्मोस, कोलोबोमा या ऐसी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज कहते हैं कि जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट ही पूरी नहीं हुई, आंख की संरचना ही सही नहीं बनी। ऐसे ब्लाइंड बच्चे यूजुअली वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि उनकी विजन तो शायद नहीं आ पाती है अगर दोनों आंखों में डैमेज बहुत ज्यादा है तो, नहीं तो लो विजन एड होते हैं जो कुछ बच्चों के काम में आते हैं, पर अक्सर ऐसे बच्चों को हम दूसरे सेंसेस जैसे टच का सेंसेशन है या बोलने का सेंसेशन है उसको डेवलप करके उनकी जीविका के लिए आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो दूसरे कॉजेस हैं ब्लाइंडनेस की, उसमें बच्चों में चोट एक मुख्य कारण है कि कई बार चोट इतनी तेज लगती है कि वो एक आंख को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है, लेकिन बच्चे फिर एक आंख से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरीके के एक्सीडेंट हुए कि दोनों आंखें चोट से गंभीर रूप से खराब हो गई, फिर वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक जन्म वाला अंधापन जो होता है। पर क्योंकि इन बच्चों ने कुछ न कुछ देखा हुआ रहता है तो इन बच्चों में आगे की वोकेशनल ट्रेनिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है। बड़े लोगों में वो अक्सर डायबिटीज की ब्लाइंडनेस की वजह से आती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं या जो अपनी आंखों की समय रहते जांच नहीं कराते हैं, या फिर उन बड़े लोगों में जिनमें एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन जैसी बीमारी होती है या फिर रेटिना या ऑप्टिक नर्व की बीमारी। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टरी तौर से संभव नहीं है। तो जब ये डैमेज होते हैं अंग हमारे आंखों के, तो फिर उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है और उन्हें कहीं ना कहीं या तो लो विजन एड का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर ब्लाइंडनेस से परेशान होना पड़ता है।
1: मैम, कहते हैं ऐसा कि एज के बाद लोगों की नजर कम हो जाती है, लेकिन आजकल बच्चों में देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं उन्हें चश्मा लगा हुआ है, तो ये किस कारणों से होता है मैम, और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
2: ये बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। ये विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है, मतलब ऐसी कुछ तकलीफें जिनको हम दवाई तरीके से, चश्मे से या बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करके रोशनी वापस दिलाते हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉजेज है वो है रिफ्रेक्टिव एरर, मतलब चश्मे का नंबर। और जैसा कि देखा गया है कि आजकल ये छोटे छोटे बच्चों में भी लग रहा है, तो चश्मे लगने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला हमारी आंखों की बनावट और दूसरा हमारे डेली रूटीन। आजकल हम डेली रूटीन में डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कई गुना ज्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों की आंखों पे जोर पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं सनलाइट को एक्सपोज्ड नहीं है। वो दिन भर अंधेरे कमरे में बैठ के बहुत नजदीक से मोबाइल चलाते हैं, तो उनको एक मायोपिया यानी कि माइनस चश्मे के नंबर जल्दी आ जाते हैं, और जिन बच्चों को ऑलरेडी चश्मा है उनके नंबर तेजी से बढ़ते हैं। तो जो रिफ्रेक्टिव एरर है ये एक करेक्ट ऑब्जेक्टिव ब्लाइंडनेस है, जिसमें कि हम आपको चश्मे का नंबर देख के आपकी रोशनी को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं। बड़े लोगों में मोतियाबिंदु आपने सुना होगा, कैटरेक्ट जो है वो एक रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है जो विजुअल इम्पेयरमेंट का कारण है। और समय रहते अपन ने जैसे किसी भी बीमारी को, जैसे वो कॉर्नियल अल्सर है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, ये सब बीमारियां अगर डॉक्टर को समय रहते दिखाई है तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, आपको चश्मे के नंबर्स और दवाइयों से वो नॉर्मल करने का प्रयास करता है। तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो है ये प्रिवेंटेबल चीजें भी हैं और रिकवरेबल चीजें भी हैं, जिनके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है और भ्रांतियों से बचने की जरूरत।
1: बिल्कुल मैम, विजन बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, तो इसे बचाने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: सबसे इम्पोर्टेंट केयर करने के लिए है कि इनका जो यूज है वो हम लिमिटेड टाइम के लिए करें। हम घंटों डिजिटल गैजेट्स पे बिना पलक झपकाए, बिना चेयर से उठे, लगातार हम इन डिजिटल गैजेट्स को यूज करने से कहीं ना कहीं हमारी आंखों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से सर दर्द, आंख में दर्द और पानी आने की शिकायतें होती है, जिसे हम डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आप बीच बीच में ब्रेक्स लें, कंटिन्यूस आप अपनी आंखों से कोई भी चीजों को स्टेयर न करें, चाहे वो पढ़ने की एक्टिविटी हो, चाहे वो लैपटॉप की एक्टिविटी हो, बीच बीच में ब्रेक्स ले लें, थोड़ी देर के लिए आप अपनी नजरें इन गैजेट से हटा दें। दूसरा, आपकी जो आंखें स्वस्थ तभी रहेंगी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे स्पेशली ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीजों को अपनी सालाना आंखों की जांच करवाना चाहिए। हम जो दवाइयों का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हमारी आंखों की हेल्थ को खराब करती है। तो अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स, तो वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनका सेवन कम किया जाए। या अगर आपको मजबूरी में स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं तो आप आई डॉक्टर को जरूर दिखाएं और बताएं कि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो प्रिवेंशन के लिए एक हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर एक्सरसाइज, ये जब हेल्दी रहेंगे तो हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, और हमारी आंखें वो भी स्वस्थ रहेंगी।
1: मैम, आपने एक्सरसाइज की बात की, तो मैम ये बॉडी एक्सरसाइज या सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज?
2: ये दोनों जरूरी हैं। बॉडी एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे वेट मेंटेनेंस और मेटाबॉलिज्म के लिए। उसकी वजह से हमको ओबेसिटी यानी मोटापा नहीं होगा और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होंगी जो इनडायरेक्टली हमारी आंखों को डैमेज करेगी। जहां तक आंखों की एक्सरसाइज का सवाल है, बीच बीच में हमको 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आंखों को बंद करना है। आप हाथों का घर्षण से आंखों को सेक सकते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि ये सूदिंग लगता है, और अपनी आईबॉल को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रोल कर सकते हैं। और एक पेन एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आप दूर से लगभग एक आर्म लेंथ यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप पेन अपनी आंखों के नजदीक लेके आएं, और वो जहां आपको डबल दिखे आप वहां रुक जाएं और उसको सिंगल देखने का प्रयास करें और 10 तक काउंट करें। ऐसे आप एक्सरसाइज जैसे हम कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइज करते हैं, वो आप 10 टाइम्स मॉर्निंग और 10 टाइम इवनिंग जरूर करें। दूसरा, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड लेना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशंस हो, मिनरल्स हो। तो आप विटामिन ए, सी, ई, जिंक वाले मटेरियल जो है वो आंखों के लिए यूज करें। कैरेट्स और फ्रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, कलर्ड फ्रूट्स, पपाया वगैरह इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ और आंखों की हेल्थ बनी रहेगी।
1: मैम, क्या बच्चों की आंखें और बड़ों की आंखों में कुछ डिफरेंस होता है, और किस तरह से उन्हें हम और सुरक्षित रख सकते हैं?
2: बिल्कुल, बच्चों की आंखें अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और 80% बच्चों की जो लर्निंग होती है वो आंखों से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे आपको बयां नहीं करते हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स साझा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बच्चों की आंखों की रूटीन चेकअप होना चाहिए। हमारे इंडिया में नॉर्मल रूटीन चेकअप बच्चों की नहीं करवाई जाती है, ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चा बड़ा होगा फिर देखा जाएगा, जबकि आइडियली हमें 1 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में और 5 साल की उम्र में जब बच्चे बयान नहीं कर पाते हैं तब भी हमें इनकी रेगुलर आई टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे दोनों आंखें खोल के देखते हैं और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं एक आंख से कुछ कम दिख रहा है। तो बच्चों की रूटीन चेकअप के दौरान हमें बहुत सारी बीमारियों का समय रहते पता चल जाता है, जिसका फिर भविष्य में असर नहीं होता है और हम उनको उसी समय ठीक कर सकते हैं। जैसे चश्मे का नंबर अगर हमने बचपन में नहीं लगाया तो आगे चल के वो एक बड़ी समस्या हो सकती है, बच्चों में आंखों में तिरछापन आ सकता है और कहीं ना कहीं नजर की कमी के चलते बच्चा अपनी स्टडीज में पिछड़ सकता है। तो अगर नजर पूरी रहेगी तो बच्चा सही तरीके से देख सकता है।
1: मैम, जैसा आपने बच्चों के लिए बताया, क्या इसी तरह महिलाओं को भी अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए?
2: जैसे बच्चे अपनी तकलीफ बयां नहीं कर पाते, वहीं फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके इग्नोरेंट हैं, या वो अपनी हेल्थ को कभी प्रायोरिटी पे नहीं लाती हैं और वो सोचती हैं कि अभी तो मेरा काम चल रहा है, जब तक मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी तब तक मैं घर वालों को क्यों बताऊं या मैं किसी और को क्यों ये समस्या या परेशानी में डालूं। तो वो फीमेल्स में जो इग्नोरेंस को लेके प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से कई बार ये तकलीफ आंख की विकराल रूप ले लेती है। तो फीमेल्स को अपनी आंखों की सुरक्षा और ज्यादा रखने की इसलिए जरूरत है कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपना घर में खाना बनाती हैं या बच्चों का ध्यान रखती हैं। कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म या ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है, फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। प्लस 40 इयर्स के बाद जो फीमेल में मीनोपॉज या हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी आंखों में कुछ तकलीफें बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स मेल्स की तुलना में 2 गुना ज्यादा आंखों की परेशानी से पीड़ित रहती हैं और वो टालने का प्रयास करती हैं और उस टालने के प्रयास में उनकी तकलीफ कई बार और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते मोतियाबिंदु का ऑपरेशन कराना हो या ड्राई आई का ट्रीटमेंट लेना हो या जॉइंट्स की डिजीज का ट्रीटमेंट लेना हो, डायबिटीज की या थायराइड की प्रॉब्लम का, टैबलेट्स के रूप में शारीरिक कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है। वो सोचती है मुझे तकलीफ नहीं है तो मैं गोली क्यों खाऊं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ के अलावा आंखों की हेल्थ को भी परेशान करती है।
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि आंखें एक बहुमूल्य वरदान है ईश्वर के द्वारा दिया गया, जिसकी हमें सुरक्षा करना बेहद जरूरी है और वो हर सीजन में हर उम्र में करना चाहिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी यही आंखें हमारे साथ रहेंगी, चाहे इनमें चश्मे का नंबर हो तो आप रेगुलर चश्मा लगाइए, आपकी स्वस्थ दिनचर्या हो जिसमें कि आपका डाइट के अलावा एक्सरसाइज और बाहर धूप में या नेचुरल लाइट में घूमना जरूरी हो, और सालाना आंखों की जांच, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा तवज्जो दूंगी कि आप किसी भी उम्र में हो, आपको कोई भी तकलीफ ना हो, उसके बाद भी आप जरूर एक बार साल में डॉक्टर के पास जाएं, अपने पुराने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और अगर आपको कोई डॉक्टर बीमारी के बारे में या किसी परेशानी के बारे में अवगत कराता है तो प्लीज उसके ऊपर शुरुआती दौर में ही ध्यान दें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें।
1: डॉक्टर विनीता रामनानी जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: श्रोता, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर विनीता रामनानी ने जो जानकारियां आज हमसे साझा करी हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का ये अगला खूबसूरत सा गीत।

आंखों की बात हो रही है तो आइए अब नजर डालते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक हमारी आंखों की सुरक्षा और सेहत के लिए नए दरवाजे खोल रही है। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लेंस टेक्नोलॉजी की। पहले जहां लेंस केवल सिर्फ चश्मे के विकल्प के रूप में काम आते थे, वहीं अब विज्ञान ने उसे एक मिनी लैब बना दिया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट लेंस बनाया है जिसमें बेहद सूक्ष्म लेंस सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे आंखों के जरिए हमारी शुगर के लेवल को माप सकते हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी तकनीक स्वास्थ्य को और आसान बनाती जाएगी। श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मुझे यानी महक गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Potata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखा

0: the car. Miss World dekhi, World Cup dekha. Chandrayaan dekha, Insat dekha. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम सबसे पहले लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विभा शर्मा के गाए निमाड़ी लोकगीत सबसे पहले गरबा

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थी विभा शर्मा, इनसे आप सुन रहे थे निर्माणी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में सैयद नासिर हुसैन और साथियों की गायी कव्वालियाँ। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे सैयद नासिर हुसैन और साथी। इसी के साथ ही ये कव्वाली के कार्यक्रम सुगम संगीत का यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।

0: आकाशवाणी है ना।
1: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। ये प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गाना, जिसकी आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

0: ये दुश्मन है खुद गर्जी का।
1: फिल्म संगीत में आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम फिल्म का एक गाना। आवाज़ें हैं चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अन्नू मलिक का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने का है और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का, तो कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने सभी से मिलकर देश हित में काम करने का आह्वान किया।
1: किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जिंदे एरिकेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्यप्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच। अदरवाइज हमने तो आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
0: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय संस्थानों ने प्रदेश के विकास में अपने योगदान और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से लैस उपचार उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शाम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। सांची की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा चार स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। रायसेन के भोजपुर में भोजेश्वर महादेव का करीब 6 क्विंटल फूलों से महाकाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में 15,000 रुद्राक्ष से विशेष श्रृंगार होगा। ओंकारेश्वर में बाबा की सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की रथ से सवारी निकलेगी। बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश के शिवालयों में भक्तों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, कटनी, रीवा, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सतना में आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास एक अभिनव प्रयोग के अंतर्गत न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारीगण की आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया आयोजित की गई। शिवपुरी में जिला प्रशासन और किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल शहर की पुरानी अनाज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक और प्राकृतिक खाद बाजार का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली

0: का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।

0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडे इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कालिया का एक गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत और इसकी फरमाइश हम आपको बताएंगे गाने के बाद।

फिल्म कालिया के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लश्कर, हरिद्वार से इन्होंने ये फरमाइश भेजी थी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवाई सालपुरा ज़िला बारा राजस्थान से, लिखने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। सुनते हैं अगला गीत जिसको हमने फिल्म दिल ने फिर याद किया से लिया है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, जीएल रावल ने इस गाने को लिखा है, सोनी कोमी का संगीत है और सुनते हैं ये गीत।

ये गीत के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से, लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कांबले, रेखा कांबले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कांबले और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, जिसको हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से। इसमें दूसरी आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, रोशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

चित्रलेखा फिल्म के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, संतोष पगारिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए हैं कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज ने। सुनते हैं अगला गीत जिसको हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और दूसरी आवाज़ लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है कातिलों के कातिल। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं गीत।

अगले गाने लिया है हमने फिल्म चुपके चुपके से, आवाज़ लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, एसडी बर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं रिंग छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है बरखेड़ा ज़िला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मैंक मूणत, चेतन नहरा नाहटा, दिशा कुश मूणत और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, इसको हमें लिया है फिल्म 1920 से। इस गाने के लिए फरमाइश आई है तुलसीराम घनश्याम त्रिवेणी प्रसाद, राहुल सागर, राजेश पंडित, खालिद खान, स्वरूप, मिलन, निखिल, इन्होंने ये फरमाइश भेजी है शिवलोक ग्रीन से, भोपाल से। सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार

0: मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से तैयार उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय इस महीने की 27 तारीख को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी जिसमें बाबा चार स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी बालाघाट में आती भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की खड़ी में 3 बजे हैं। आइए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम बता दें। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं शाम 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम आज कल 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। और ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा रोज की तरह 7:21 पर होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम सुर्खियों में हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। फिल्म संगीत 8:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10 बजे। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे सौरभ विरत चक्रवर्ती का सुरबार वादन, राग होगा छाया नट। ये थे आज के आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को हैं। अब हमारा कुछ देर के लिए मीडियम वेव पर प्रसारण बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप हमारे मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विभा शर्मा के गाए निमाड़ी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विभा शर्मा के गाये निमाड़ी लोकगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नासिर हुसैन, सैयद नासिर हुसैन और साथियों की गाये कव्वालियां।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सैयद नासिर हुसैन और साथियों की गायक कव्वालियां। डीटीसी ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म खुदा कसम का एक गाना। दूसरी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी के साथ में आशा भोसले की है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म हीरों का चोर, इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है। सोनी कोमी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सरगम से, संगम से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की है। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुना रहे हैं शराबी फिल्म में किशोर कुमार को। प्रकाश मेहरा ने इस गाने को लिखा है और बप्पी लहरी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 साल पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए केवल 1.78 करोड़ का लेन देन हुआ था। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से तैयार उप डाकघर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शाम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय इस माह की 27 तारीख को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खेल इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री

के साथ का आयोजन करेगा। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी, जिसमें बाबा चार स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: जन्म दिया। कुछ दिनों बाद
1: देखो जमुनिया, रतन भैया रहे नहीं, सो अब तुम भी कोई ठाव ठिकाना ढूंढो। मेरे बस का कमाना खिलाना नहीं होगा ये, और जो फसल काट के लाया हूं उसमें से हिस्से की आस तो करना भी मत। हाँ, दो चार टाइम की बात हो तो चलो ठीक है, खिला पिला देंगे।
2: अभी मुझ पर आफत आन पड़ी है, बेबस हूँ। नहीं तो जमुनिया कमाकर तुम्हारे परिवार को भी पाल रही थी, पर ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँ?
1: वो सब मैं नहीं जानता, पर यहाँ से तुम खाली करो, दो चार दिन की मोहलत देता हूँ बस।
3: अरे का कह रहा रे करण है? अरे ऐसी हालत में तो दुश्मन भी मदद कर ही न देता है।
1: ए, सुनो, तुम तो हमारे बीच में पड़ो ही मत।
3: अरे काहे नहीं पड़े, देखा नहीं जा रहा है, यही से न कह रहे हैं?
2: रहने दो अम्मा, ये आपको भी कुछ कह देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना जुलुम तो कोई पराए पर भी नहीं करता, ऐसे कैसे चले जाएं? अपना गांव है, पंच है, पंचायत बुलाएंगे तब फैसला होगा।
1: अरे जाजा, बुला ले पंचायत, देखता हूँ कौन आता है।
2: दुनिया से इंसाफ उठ नहीं गया है करण भैया, कोई तो आएगा।
1: अरे जाजा जा, बड़ी आई पंचायत बुलाने वाली क्या?
4: देखो इंदल भैया, जमुनिया पंचायत बुलाने वाली है, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना है, और आगे जो तुम कहोगे मैं करूंगा, पर इस जमुनिया को सबक सिखाना है।
5: अरे ठीक है भैया, ठीक है।
4: और हाँ, वो भैया का बड़ा बेटा गोलू भी मुझे चाहिए, बड़ा होकर बड़ा काम आएगा।
5: अरे तू बड़ा शातिर है रे, चल सब ठीक हो जाएगा।
0: इसी तरह प्रलोभन देकर सभी पांचों पंचों को करण ने अपनी ओर कर लिया, और फिर हुई पंचायत।

0: रखो जमुनिया, अपना तीन टप्पर संभाल और निकल जाए यहां से।
1: देखो पंचो, आप खुद सोचो ऐसी हालत में मैं कहां जाऊंगी। पर चलो, अलग होना है तो खेत का आधा हिस्सा मुझे दे दो, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी।
0: ये सपना तो देखना ही मत, काहे का हिस्सा है, कहां का खेत?
1: ए, सबने देखा है कि उस बंजर जमीन को मेरे मरद ने अपने पसीने से खेती करने लायक बनाया है। हाँ
2: देखो जमुनिया, रतन तुम्हारा मरद बाद में बना, पहले वो करण का भाई था, क्यों बंचो?
3: हाँ,
2: सही बात है, सही बात है।
1: अरे ये क्या हो रहा है?
0: तुम निकलो यहाँ से, उठाओ अपनी बेटी को और निकलो यहाँ से।
1: तो क्या मेरा बेटा भी हत्या लोगे क्या? तू कब बेटे वाला हो गया? हाँ
0: तो क्या इसे अपना बेटा समझती हो?
1: समझती नहीं हूँ, अपनी कोख से पैदा किया है इसे।
2: अरे तुम दोनों चुप रहो, इसका फैसला हम किए देते हैं। करण, तू बुला अपनी औरत को, बच्चे को जहाँ खड़ा करो बीच में। एक तरफ से जमुनिया इस बच्चे को खींचेगी और दूसरी ओर से करण की औरत, जो खींच लेगा बच्चा उसका। ठीक बात है ना भाई?
3: हाँ, ठीक है।
2: अपने आप फैसला हो जाएगा। हाँ
1: आजा गोलू, आजा गोलू बेटा।
4: आ गया मेरा बेटा, आ गया। ए, ये क्या किया जमुनिया? अरे अपने बेटे को तूने छोड़ दिया।
1: कितने जालिम है ये, देख नहीं रही थी कितनी बेरहमी से करण की औरत गोलू को खींच रही थी, कहीं उसका हाथ टूट जाता तो।
2: हाँ अब होगा इंसाफ, आधी जमीन करण की और आधी इस लड़के की, और लड़का जब करण का ही हो गया तो जमीन उसकी भी करण की हो गई।
0: चलो पंचो, हो गया फैसला
2: भैया, हो गया फैसला, हो गया फैसला, खत्म करो पंचायत।
0: इंदल भैया भी कमाल करते हैं, झट से कर दिया फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी।

0: है वहां? जवाब तो दो, कौन है? अरे कौन हो बेटी तुम? कहां जाना है?
1: पता नहीं बाबा।
0: कौन गांव की हो?
1: पता नहीं।
0: ये तुम्हारी बिटिया है? अच्छा अच्छा, ससुराल में घर वालों से झगड़ा हुआ होगा, सो बिटिया को लेकर चली आई।
1: घर वाला होता तो दर दर कहाँ है भटकते बाबा।
0: अंदर आ जाओ बिटिया, आ जाओ, घबराओ मत, बाहर बेकार में भीग रही हो। अरे बेटी, ये कुछ पैसे हैं, रख लो इन्हें और अपने माँ बाप के पास चली जाना, ना होगा तो मैं कल ही तुम्हें पहुंचाऊंगा।
1: माँ? माँ नहीं है, भैया है, पर वो भी अंधे बाप को ही बोझ समझता है, तो मैं कहाँ रहूंगी बाबा?
0: अरे तो ऐसे कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी बेटी?
1: सुना है हमारे गांव के दीवान जी का भट्टा है यहाँ, सो वहीं मजूरी करके गुजर बसर कर लेंगे, चार पैसे कमाकर बिटिया को पढ़ाऊंगी, ताकि इसकी हालत मेरे जैसी ना हो।
0: बड़ी बड़ी प्यारी बच्ची है, इसका नाम कुछ रखा है? अरे अभी तो बहुत छोटी है।
1: इसके बाप ने इसके पैदा होने से पहले ही नाम रख दिया था, गोली। ऐ जन्मी, वो चला गया।
0: मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इसका नाम चिरैया रख दो, खूब डाली डाली चहकेगी। और हाँ, हम दीवान और उसके आदमियों को जानते हैं, वो लोग नेक नियत के नहीं हैं। हमरी मानो तो उसके यहां नौकरी ना करो। अरे क्या सोचने लगी?
1: बाबा, हम अपना हक लेने से डरते क्यों हैं?
0: काहे के हम गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना। अच्छा सुनो बिटिया, दो चार दिन की बात तो है नहीं। ए बेटा, बिटिया को लेकर कहाँ कहाँ भटकोगी? हमारी एक झोपड़ी खाली पड़ी है, उसमें रह जाओ, हमें कोनो एतराज नहीं है।
1: हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, बस रोजी रोटी मिल जाए इतना ही।
0: अरे बिटिया, हमें बांस की टोकरी पंखा बनाना आता है, सो तुम्हें सिखा देंगी, हाट बाजार में आराम से बिक जाएगा। जैसे मेरा पेट भर रहा है ना, तुम दोनों का भी भर जाएगा। ला बिटिया को गोद में मैं ले लेता हूँ, ला दे, अब तू थक गई होगी ना। ले ले ले ले ले ले ले, बड़ी सुंदर बिटिया है।

0: लगभग 5 साल बाद।
1: मायने, आज भी इतने सूपे और टोकरी बच गए?
2: कोई बात नहीं चिरैया बेटी, अगले हाट में बिक जाएंगे। सुन,

0: देख तो, झुल्लन बाबा कहाँ है? बुला ला, खाने का वक्त हो रहा है।
1: ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ।
0: ई का पीस रहे हो बबुआ?
2: बुढ़िया ताई की खांसी के लिए दवाई बना रहे हैं।
0: अरे वाह, बड़ा जानकार है रे तू। कब से पिला रहा है जी दवाई?
3: अरे 3 साल से भोग रहे हैं। जय जय दवाई पीते पीते तो।
0: अरे तुम तो कमजोर हो गई हो अम्मा। चिंता ना करो अम्मा, सोमवार को जौनपुर का हाट लगेगा। हाँ, वहां शहर से डॉक्टर आते हैं, हम तुम्हें ले चलेंगे। तुम एकदम ठीक हो जाओगी, चिंता ना करो, बिल्कुल ठीक है।
3: ठीक है बेटी, ठीक है।
0: का हो गया भैया, इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो?
2: अरे अरे, मुकुंद की जोरू दर्द से तड़प रही है, जचकी से सो दाई को बुलाने जा रहे हैं।
0: तो मैं मुकुंद भैया के घर जाती हूँ, तू दाई को बुला के ले आ।
2: हाँ हाँ।

0: हिम्मत रखो बेटिया, हिम्मत हिम्मत रख बस। अरे बस बेटिया बस, सब ठीक हो जाए।
1: अरे ये क्या कर रहे हो सब, हाँ घेर कर खड़े हो, हटो हटो चलो अलग हटो।
0: अरे सबर,
1: हवा आने दो। ये तुलसी बेटा सुन, जा जा जल्दी जाकर थोड़ा गर्म पानी कर लो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हाँ, जल्दी कर,
1: तनिक सबर करो शारदा, तनिक सबर करो।
0: हाँ, हाँ, सबर कर बेटा।
2: बाबा मिट्टी का तेल नहीं है, चूल्हा जलाना था, पानी गर्म करना है।
3: इतनी जल्दी मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊंगा, कुछ लकड़ ले आता हूँ उस पर गर्म कर लो।
1: अरे भैया ना हो तो इसे अस्पताल ले चलो, हालत ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल।
3: ना आसान नहीं जमुनिया बहन, अस्पताल अस्पताल इनसे 12 कोस दूर है, तहसील तहसील ले जाएगी पड़ी।
1: इधर शारदा बहन की जान मुसीबत में है और आप लोग ताश खेलने में लगे हैं, ए नहीं कि कुछ मदद करें। हाँ
4: ये तो औरतों का काम है,
5: और क्या
4: हम क्या मदद करें। ये ले भाई मेरा चिड़ी का इक्का
5: है। अरे घबराओ मत जमुनिया बहन। इस काम में बच्चे ऐसे ही रोते धोते पैदा होते हैं, हम भी तो हुए हैं। अरे कोई अस्पताल में नहीं पैदा हुए। अरे चलो उठो रे, सारे खेल का मजा खराब कर दिया। बोलो बोलो क्या मदद करे।
4: चलो चलो चलो चलो
1: कक्का, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे दीवान जी, तनिक मिन्नत करके ले आओ ना उनका ट्रैक्टर, उसी से ले चलेंगे।

0: अगर गांव में अस्पताल होता तो शारदा बच सकती थी ना काका।
1: चबनिया बेटा, अस्पताल की बात तो बहुत दूर की है। अगर सड़क ही बनी होती तो कैसे भी साइकिल ट्रैक्टर से शहर के अस्पताल पहुंचा देते।
0: कक्का, यहां दो टाइम की रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, मरीज के लिए अस्पताल नहीं, आवे जाए के लिए सड़क नहीं, बच्चन को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं। कम से कम ये जरूरी चीजें तो होनी चाहिए ना।
1: काहे को सपना दिखाए रही हो जमुनिया?
0: सपना नहीं है कक्का, ये हमारा हक है।
1: अरे अनपढ़ होकर भी पढ़े लिखे जैसी बातें कर रही हो। अरे बेटा, हम अंगूठा छाप हैं, ये ना भूलो।
0: कक्का, हम पढ़ेंगे, जीवन बार बार नहीं मिलता। बस ये बताओ कक्का कि हमें पढ़ाएगा कौन?
1: सचमुच जमुनिया, तुम पढ़ोगी?
0: मन से बोल रही हूं कक्का, मुझे देखना है, जानना है कि कागज कलम में कौन सा मंत्र है जो आदमी को इतनी ताकत दे देता है।
1: जब ठान ही ली है तो ले चलेंगे बिटिया।

0: अरे अरे अरे चुल्लन, आओ आओ भाई, आज कैसे इस गुरुजी की याद आ गई है? कहां से रास्ता भूल गए?
1: अरे गुरुजी, ऐसा मत कहिए, रास्ता भूले नहीं है बल्कि रास्ता खोजने आए। ये अपनी जमुनिया है, जमुनिया।
2: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम।
1: इसे अब पढ़ने की धुन सवार हुई है ई उम्र में।
0: अरे भाई, अब पढ़ने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में?
1: अरे गांव की चिंता सता रही है, गांव बदलना चाहती है गुरु।
0: अरे वाह, अरे बड़ी खुशी की बात है भैया ये तो। बेटी, इसके लिए तुम्हें पहले अपने देश की पुरानी तस्वीर देखना पड़ेगी, फिर समझनी पड़ेगी। सोच लो।
3: जी लो, पानी पी लो। अरे जे तो शुरू ही हो गए, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए।
0: देवी जी।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया का भाग 6। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में वन विभाग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के अवसर पर आयोजित आभार प्रदर्शन समारोह में पदोन्नत शासकीय सेवकों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित कर नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर्स को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 साल पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय इस महीने की 27 तारीख को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 188.32 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी को और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त दिपेश बर्डे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं के दिलों की वाणी यानी युववाणी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय करियर सेवा यानी नेशनल करियर सर्विस NCS। दोस्तों, आज के समय में करियर चुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सवाल होता है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, कौन सी नौकरी मेरे लिए सही है, सरकारी नौकरी के अवसर कहाँ मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में क्या विकल्प है और अगर हमें अपने कौशल को बेहतर बनाना हो तो कहाँ से शुरुआत करें। दोस्तों, इन तमाम सवालों के बीच भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS। दोस्तों, आज जानेंगे राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं आज की शाम का पहला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म मैं हूं ना से।

0: दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय करियर सेवा आखिर क्या है। राष्ट्रीय करियर सेवा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले युवाओं, नियोक्ताओं, करियर सलाहकारों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी सेवाओं के एक डिजिटल मंच प्रदान करना है। दोस्तों सरल शब्दों में कहें तो NCS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा नौकरी खोज सकते हैं, करियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कौशल तथा रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर NCS पर युवाओं के लिए क्या खास है। सबसे पहले जॉब सर्च यानी नौकरी की तलाश। दोस्तों आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, स्थान और रुचि के अनुसार नौकरी के अवसर तलाश कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा है करियर इन्फॉर्मेशन और करियर काउंसलिंग। दोस्तों कई बार विद्यार्थी किसी एक क्षेत्र में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने वही रास्ता चुना होता है, लेकिन हर व्यक्ति की रुचि, क्षमता और लक्ष्य अलग होता है। ऐसे में सही करियर मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों NCS युवाओं को करियर से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। दोस्तों NCS सिर्फ नौकरी तलाश वाले युवाओं के लिए नहीं है। अगर कोई कंपनी या संस्था कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती है तो वह भी NCS के माध्यम से अपनी जॉब वैकेंसीज पोस्ट कर सकती है और उपयुक्त उम्मीदवारों तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ है जॉब सीकर्स और दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर्स। NCS दोनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनता है। तो दोस्तों अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या अपने करियर को लेकर किसी दिशा की तलाश कर रहे हैं तो NCS आपके लिए एक उपयोगी सरकारी मंच हो सकता है। तो आज ही अपने करियर को लेकर एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी क्वालिफिकेशन पहचानिए, अपनी स्किल्स को समझिए, सही अपॉर्चुनिटी तलाशिए और अपने भविष्य की दिशा खुद तय कीजिए। दोस्तों याद रखिए, करियर सिर्फ नौकरी पाने का नाम नहीं बल्कि अपनी क्षमता को सही दिशा देने का नाम है। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं फिल्म दिल मांगे मोर से ये गाना।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ माही पारस मोदी

0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं आज की खास वार्ता, विषय कार्बन फुटप्रिंट और युवा दायित्व पर। वार्ताकार है माही पारस मोदी।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ माही पारस मोदी और आज मैं आपसे किसी दूर की कहानी को साझा करने नहीं आई हूँ, बल्कि हमारी अपनी धरती की कहानी साझा करने आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह की हवा पहले जैसी ठंडी और ताज़ा क्यों नहीं लगती? क्यों गर्मी हर साल थोड़ी और तेज़ हो जाती है और बारिश समय पर क्यों नहीं आती? असल में ये संकेत है हमारी धरती के बदलते संतुलन का। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कार्बन फुटप्रिंट। साधारण शब्दों में कहें तो हमारे रोज़मर्रा के काम जैसे वाहन चलाना, बिजली का अनावश्यक एवं अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई, इन सब से वातावरण में जो हानिकारक गैसें बढ़ती हैं वही मिलकर हमारा कार्बन फुटप्रिंट बनाती हैं। पर्यावरण का संकट केवल वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि अब यह आम जन की समस्या बन चुका है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी इस पृथ्वी को कितना प्रभावित कर रही हैं? क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है वही आज हमारी लापरवाही के कारण संकट में है? आज कार्बन फुटप्रिंट केवल वैज्ञानिक शब्द नहीं रहा, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का आईना बन गया है। हम जितना अधिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग करते हैं उतना यह कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, और जब यह बढ़ता है तो इसके परिणाम हमें प्रकृति के बदलते रूप में दिखाई देने लगते हैं। कभी असहनीय गर्मी, कभी अचानक तेज़ बारिश, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। आज कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसेस की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके परिणाम हम अपने आसपास साफ साफ देख सकते हैं। कई स्थानों पर गर्मी पहले से अधिक बढ़ गई है। ये मौसम का बदलाव नहीं, प्रकृति का असंतुलन है। कहते हैं कि धरती का ताप बढ़ रहा, ये संकेत प्रकृति का है। समझ लो अब भी समय है, ये संदेश भविष्य के हैं। अगर आज नहीं संभले हम अपने व्यवहार से तो कल पछताना होगा हमें अपने ही संसार से। कार्बन फुटप्रिंट के बढ़ने से केवल मौसम ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्रदूषण बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। आज कई लोग सांस से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर हम इसी तरह पृथ्वी का दोहन करते रहे तो आने वाले समय में यह सब दुर्लभ हो सकता है। यही कारण है कि आज पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखने की आवश्यकता है। श्रोताओं, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके पास ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और बदलाव लाने का साहस भी होता है। आज अगर युवा यह निश्चय कर ले कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करेगा तो समाज में एक नई दिशा दिखाई दे सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं? अगर उत्तर हाँ है तो यही बदलाव भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे, हजार रास्ते बन जाएंगे। बस जागरूकता की लौ जलानी है, फिर बदलाव खुद आ जाएंगे। अगर हम ये सोचें कि पर्यावरण तो बहुत गहन और बड़ा विषय है, हमारे छोटे छोटे योगदानों से क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी माँ हमारी छांव बन सकती है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जैसे बिजली का अनावश्यक उपयोग न करने, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, छोटी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत डालें। इन योगदानों से भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं हम। इसी तरह यदि हम अधिक पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, तो यह पर्यावरण को संतुलित रखने में भी बहुत सहायक होगा। श्रोताओं, अगर हम हाल के वर्षों की खबरें और वैज्ञानिक रिपोर्टों को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पर्यावरण का संकट अब केवल चेतावनी नहीं, वास्तविकता बन चुका है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने बताया था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई वर्षों को इतिहास के सबसे गर्म वर्ष के रूप में भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में अत्यधिक गर्मी की लहरें भी दिखाई देती हैं। कुछ क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लगी तो कहीं अचानक से बाढ़ आ गई। हजारों लोगों के जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। न सिर्फ लोग बल्कि उनके रोजगार, खासकर किसानों के खेत खलिहान भी भारी मात्रा में नष्ट हुए। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम केवल इन खबरों को सुनकर आगे बढ़ जाएं, या फिर इनके पीछे छुपे संदेशों को समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही रोचक बात कही है, लोग किसी बड़े खतरे को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक असर सीधा उनके जीवन पर दिखाई न दे। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर लोग सुनते तो हैं, मगर उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर महसूस नहीं करते। और यही युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है। दुनिया में कई देशों में युवाओं ने एक नया तरीका अपनाया है, क्लाइमेट स्टोरी टेलिंग, यानी आंकड़ों से ज़्यादा लोगों की असली कहानियाँ सुनाना। और अब केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि भारत में भी युवाओं द्वारा चलाया गया यूएन इंडिया का वी द चेंज अभियान लोगों की असली कहानियाँ सामने ला रहा है। आज हम खुद भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक संदेश बना सकते हैं। पर्यावरण तब तेज़ होता है जब लोग केवल सुनकर नहीं असल ज़िंदगी से देखकर प्रेरित होते हैं और कदम उठाते हैं। आज की पीढ़ी के पास केवल तकनीक की ही नहीं बल्कि प्रभाव की भी शक्ति है। एक पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, एक आवाज़ आंदोलन बन सकती है और एक छोटा सा कदम समाज को बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या हम केवल ट्रेंड बनाना चाहते हैं या सच में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना होगा जो अपने करियर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए, क्योंकि आने वाले वर्षों में लोग ये याद नहीं रखेंगे कि हमने कौन सा ट्रेंड फॉलो किया, वे याद रखेंगे हमने परिवर्तन के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया। जब पृथ्वी ने मदद मांगी तो क्या हम चुप रहे या हमने आवाज़ उठाई थी। और शायद यही वो पल है जहाँ से बदलाव शुरू हो सकता है, एक सोच से, एक जिम्मेदारी से और एक ऐसे युवा से जो ये समझता हो कि धरती केवल रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। हमें अब यह समझना होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कोई भविष्य की समस्या नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, बिगड़ती हवा ये केवल समाचार नहीं, प्रकृति की चेतावनियां हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी संभव हो प्रयास करेंगे और पर्यावरण संरक्षण हेतु दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
0: चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी विषय पर, टाइम मैनेजमेंट और स्टडी प्लान। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम कम है, सिलेबस बड़ा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है और साथ ही दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। ऐसे में कई बार हम पढ़ाई शुरू करने से पहले ही प्रेशर महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने अवेलेबल टाइम को सही तरीके से मैनेज करें और एक सिंपल सा स्टडी प्लान बनाएं तो पढ़ाई को काफ़ी आसान और व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आखिर है क्या। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि दिन के हर घंटे का हिसाब रखना या लगातार पढ़ते रहना। इसका सिंपल सा मतलब है अपने समय को इस तरह यूज़ करना कि ज़रूरी काम समय पर पूरे हो सके और पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त टाइम मिल सके। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिन को समझें और यह देखें कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। कई बार प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होती बल्कि टाइम के सही इस्तेमाल की होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो शुरुआत में अपने ऊपर बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए। कई स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते समय इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि उसे देखकर मोटिवेशन आने के बजाय प्रेशर आने लगता है। दोस्तों, इसलिए शुरुआत हमेशा छोटे टारगेट से कीजिए। जितना कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं उतने टाइम से शुरुआत करें। जब आपकी कंसंट्रेशन और स्टडी हैबिट डेवलप होने लगे तो धीरे धीरे स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं। यानी दोस्तों शुरुआत में खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि आप कई घंटों तक लगातार पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। पहले हैबिट बनाइए, फिर धीरे धीरे उसे इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप वास्तव में फॉलो कर सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यह तय कर ले कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको किस काम को प्रायोरिटी देनी है। एक दिन में बहुत सारे टारगेट रखने के बजाय कुछ ज़रूर टारगेट्स रखिए। दोस्तों अगर किसी दिन आपका पूरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्लान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी स्टडी जर्नी की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। फोकस इस बात पर कीजिए कि आप अपने अवेलेबल टाइम में कितना बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, सबसे पहले खुद से है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त से 3 सितंबर 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी IOCL की आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन जरूर करें। चलिए दोस्तों अब सुनाते हैं आपको फिल्म बदलापुर से यह गीत।

दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

युवा श्रोता भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है यारियां फिल्म से। आवाज है मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की। मिथुन के बोलों को संगीतबद्ध किया स्वयं मिथुन ने।

आशिकी टू लीजिए इस फिल्म में सुनिए इरशाद कामिल के बोल, धुन जीत गांगुली की है, आवाज़ें पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर के बोल, संगीत संजीव कोहली और मदन मोहन के, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाजें हैं। फिल्म है वीर जारा।

0: लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के आवाजों में गाए वीर जारा फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन, चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता और निर्माणाधीन स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने ISBT और नादरा बस स्टैंड पर बाहर से लाई जा रही खाद्य सामग्री की जांच की और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडौरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
1: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए।

0: ये NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था।

0: जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली है। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश।

0: आज की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ऐसी मूर्ति तो मैंने
7: वाओ वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
4: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
5: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
8: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
9: ग्रेट, मार्वेलस।
5: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
9: वंडरफुल।
10: हाँ, हम सहमत हैं।
2: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
8: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
2: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
3: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
2: आज करे सो अब, पल में परलय हो।

0: होएगी बहुर करेगा कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया सोचा ना था फिल्म से, सोनू निगम और संजीवनी की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के बोल, धुन तैयार की संदेश शांडिली ने।

0: श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाए गुरु फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। कार्यक्रम आजकल में आप सभी का स्वागत है। आलेख है विश्वास कैलाश सारंग का, जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और विषय है भारत की जेंजी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया देश का गौरव। वाचन पूर्वा त्रिवेदी। जब युवा संकल्प लेते हैं तो इतिहास बनता है। जब तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है तो पूरा राष्ट्र गर्व से भर उठता है। भारत का जेंजी अब केवल संभावनाओं का प्रतीक नहीं बल्कि उपलब्धियों का पर्याय बन चुका है। ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए केवल पदकों का महोत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी के आत्मविश्वास

0: अनुशासन और वैश्विक खेल नेतृत्व का प्रतीक बनकर सामने आया है। 122 भारतीय खिलाड़ियों ने 8 सामान्य खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में भाग लेते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर विश्व पटल पर संपूर्ण भारतवर्ष का मान बढ़ाया है। तो वहीं भारत के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में कई बार डबल पोडियम का भी गौरव हासिल किया है। साथ ही मध्य प्रदेश एकेडमी की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य और वेट लिफ्टर अजय बाबू दोनों ने रजत पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में चुनौतीपूर्ण थे। भारत के परंपरागत पदक दिलाने वाले खेल रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग और टेबल टेनिस खेल का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद भारत के जेंजी खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि अब भारत की खेल शक्ति कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं रही है। भारत के जेंजी खिलाड़ी अब हर उस मंच पर अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं जहां अवसर उपलब्ध हैं। वे अपने अदम्य साहस, अथक परिश्रम और अद्भुत प्रतिभा से पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत अब केवल भाग लेने वाला देश नहीं बल्कि खेल महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारतीय मुक्केबाजों का स्वर्णिम प्रदर्शन इस उपलब्धि का सबसे बड़ा आधार बना। भारत ने बॉक्सिंग में रिकॉर्ड 10 पदक जिसमें 7 स्वर्ण सम्मिलित हैं जीतकर नया इतिहास रच दिया। ये किसी भी देश द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड है। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीता जबकि साक्षी चौधरी ने शानदार प्रदर्शन से भारतीय मुक्केबाजी का भविष्य और भी उज्जवल कर दिया। मीराबाई चानू ने अपना तीसरा लगातार कॉमनवेल्थ स्वर्ण जीतकर खिताबी हैट्रिक पूरी की। वहीं ऋषिकांत सिंह पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत जीतकर एवल बॉडी वर्ग में पोडियम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। जूडो में अस्मिता डे इस खेल में भारत की पहली कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी और हर्ष सिंह ने भी पदक जीतकर इतिहास रचा। एथलेटिक्स में भारत के युवा सितारों ने नई ऊंचाइयां छुई। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बने। तेजस्विन शंकर डिकॉथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने जबकि चोट के कारण बर्मिंघम 2022 में हिस्सा न ले पाने वाले नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर पोडियम पर वापसी की और एक बार फिर खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे अच्छा पैरा स्पोर्ट्स प्रदर्शन किया और 7 मेडल जीते जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सम्मिलित हैं। इनमें 6 मेडल पैरा एथलीट्स में मिले जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलीट्स पोडियम पर भारतीय खिलाड़ियों के पहुंचने का 20 साल का इंतजार खत्म किया और कई स्पर्धाओं में डबल पोडियम हासिल कर विश्व मंच पर अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद इस प्रतियोगिता में भारत के कुल मेडल की संख्या 19 बार की भागीदारी में 603 हो गई है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद गेम्स के इतिहास में 4th सबसे सफल देश बन गया है। ये है भारत के असली जेंजी जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। आज भारत का जेंजी केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान के सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब दुनिया की निगाहें कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 पर है जिसकी मेजबानी भारत करेगा। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: भारत के जेंजी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ाया देश का गौरव। आजकल में अभी आप सुन रहे थे विश्वास कैलाश सारंग का आलेख, वाचन स्वर पूर्वा त्रिवेदी का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राणा शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के

0: अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। पेश है खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे की यह रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला स्तरीय अधिकारी नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं। अभियान के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी गांधवा के शिविर में शामिल होकर जन समस्याओं के समाधान की समीक्षा कर चुके हैं। शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को मौके पर ही राहत मिल रही है। अब अभियान का अगला चरण 27 अगस्त को खंडवा शहर में आयोजित होगा। नगर निगम के जोन क्रमांक 1 और 2 में लगने वाले शिविर में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी से जुड़े आवेदनों का निराकरण भी किया जाएगा। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जानकारी और उद्यम संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सुशासन की उस सोच को साकार कर रहा है, जिससे मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: हमारी दूसरी खबर है झाबुआ से, जहां सिकल सेल रोग से प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से जोड़ने की दिशा में प्रोजेक्ट संपूर्ण सिकल केयर की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्क्रीनिंग से लेकर उपचार, नियमित अनुश्रवण और पुनर्वास तक समग्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश यादव।
2: झाबुआ जिले में सिकल सेल रोग से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को शत प्रतिशत पहचान, नियमित उपचार और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झाबुआ कलेक्टर योगेश तुकाराम बरसठ के निर्देशन में संपूर्ण प्रोजेक्ट सिकल केयर की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से सिकल सेल की नियमित स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी व्यक्ति के सिकल सेल से प्रभावित पाए जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को भी जांच कर आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाएगा। सभी गर्भवती महिलाओं और पात्र हितग्राहियों की सिकल सेल जांच पर विशेष जोर दिया जाएगा। चिन्हित मरीजों की आवश्यकता अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही हाइड्रोक्सिल यूरिया और फॉलिक एसिड जैसी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार की प्रगति पर नियमित नजर रखने के लिए प्रोसेस कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत सिकल सेल मित्र के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की पहल की गई है। इच्छुक लोग इच्छा से सिकल सेल मित्र बनकर मरीजों और उनके परिवारों को आवश्यक सहयोग दिलाने में मदद कर सकेंगे। प्रोजेक्ट संपूर्ण सिकल केयर के माध्यम से सिकल सेल रोगियों को केवल उपचार तक ही सीमित न रखते हुए नियमित स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सहयोग और आर्थिक पुनर्वास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव।
0: हमारी अगली खबर है नर्मदापुरम से। जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।
3: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले में प्रशासन का जोर अब जनता तक पहुंचकर समस्याओं के समाधान पर है। हर शुक्रवार जनसंवाद और समाधान शिविरों में नागरिकों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों का निराकरण करने के साथ शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत अधिकारी गाँव में पहुंचकर स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और दूसरी शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। जिले की सिवनीमालवा के हतनापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। वहीं माखन नगर क्षेत्र में विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारियों की जानकारी ली गई। इस दौरान ग्रामीणों की पेंशन, क्षतिग्रस्त मकान और आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इधर अभियान में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर है। पीएम किसान, आयुष्मान पेंशन, लाडली लक्ष्मी और स्वरोजगार जैसी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: हमारी अगली खबर है इंदौर से, जहां बीते दिनों पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी

0: 2.0 अभियान चलाया, जिसके तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विस्तार से बता रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
1: इंदौर पुलिस ने जिले में नशे के दुष्प्रभावों से आमजन को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और बस्तियों में सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों, फिल्म और टीवी जगत की हस्तियों को भी जोड़ा गया। पुलिस ने शहर के अलग अलग विद्यालयों में अभियान के संदेश एवं नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देने वाली विशेष शैक्षणिक कॉपियों का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के बारे में चर्चा करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया कि
2: मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चलाया गया था, इसमें इंदौर पुलिस के द्वारा दिन प्रतिदिन नए कार्यक्रम चलाए गए थे। दिन प्रतिदिन हमने स्कूल्स और कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया।
1: नशे के विरुद्ध इस अभियान में पुलिस विभाग की विशेष उपलब्धि जन सहयोग से मानव श्रृंखला का विश्व रिकॉर्ड रही। इसके तहत शहर में 8534 नागरिकों ने शहरवासियों से नशा न करने की अपील करते हुए एक मानव श्रृंखला बनाई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं हरदा जिले की तरफ, जहां कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन और साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरदा से हमारे संवाददाता लोमेश कुमार गौर।
3: हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बीते दिनों प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में सभी स्कूलों के मध्याह्न भोजन बनाने वाले कक्षों में एग्जॉस्ट फैन और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन देने, साफ पेयजल उपलब्ध कराने और सभी स्कूलों में पानी जाँच किट रखने, समय समय पर सफाई करने, तय मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण और खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण की नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर।
0: हमारी अगली खबर है जबलपुर से, जहां मदन महल की ऐतिहासिक पहाड़ी पर रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय अब आकार लेने लगा है। करीब 24 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह परिसर शहर के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल होगा। यहाँ रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। अधिक जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
4: संस्कारधानी जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर रानी दुर्गावती के जीवन और गोंडवाना की गौरवशाली विरासत को अब और करीब से जानने का मौका मिलेगा। यहाँ आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके साथ उद्यान, लैंडस्केपिंग, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। संग्रहालय में रानी दुर्गावती के शौर्य, उनके जीवन और जनजातीय संस्कृति से जुड़े प्रसंगों को अलग अलग माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना का बड़ा आकर्षण यहां स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की करीब 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा होगी। परियोजना को करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही संग्रहालय में HVAC विद्युत व्यवस्था और रोशनी से जुड़े आधुनिक इंतजाम भी किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: अब हम रुख करते हैं डिंडौरी जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के तहत कृषि मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। पेश है डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया की यह रिपोर्ट।
5: डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई तथा जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के प्रभावी समन्वय, बेहतर क्रियान्वयन तथा योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है। योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई एवं कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ ही श्री अन्न के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: हमारी

0: अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किए। श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर कंपू ग्वालियर में खेले गए सब जूनियर वर्ग के फाइनल में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया। वहीं जूनियर वर्ग के खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत को 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रतियोगिता का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पैरा स्विमिंग इंडिया के चेयरमैन एवं हॉकी मध्य भारत ग्वालियर के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उपस्थित थे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर अरविंद सिंह राणा ने बताया,
1: अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जूनियर और सब जूनियर का हॉकी वुमेन्स का एकेडमीज का, जिसमें इंडिया की बेस्ट 25 हमारे एकेडमीज की 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया इसमें, और इस बार की विजेता टीम भी हमारी थी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है गुना से, जहां युवा संगम अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
3: गुना जिले में युवा संगम अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्री बीएस मीना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया,
4: जिले में निर्धारित दिवस पर हर माह युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन लगातार जारी है, जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी और युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय महाविद्यालय परिसर आरोन में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 164 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए मौके पर ही ऑफर लेटर वितरण किए गए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के 2300 से अधिक हितग्राहियों को 9,57,00,000 का इतला वितरण कराया गया।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन, वाचन पूर्व त्रिवेदी का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों

0: के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 7:05 हुए, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर, और रात 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 सुनिएगा सौरभ व्रत चक्रवर्ती का सुरबहार गायन। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में

समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित एक कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 बजे। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिएगा आर्या पुरोहित की गाई कुछ गजलें। 9:30 बजे कार्यक्रम शब्द सागर में डॉक्टर वसंत निर्गुणे की वार्ता, विषय रहेगा आदिवासी परंपरा में प्रतीक योजना। जिले की चिट्ठी, इसका प्रसारण समय सुबह 10 बजे है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 बजे सुनिएगा पंडित आसकरण शर्मा का ख्याल गायन। कल शाम 7:25 पर होंगे बुंदेली समाचार और 7:30 बजे किसान वाणी में कल आप सुन सकते हैं महिला उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण, विषय पर डॉक्टर सुखबीर सिंह से ली गई भेंटवार्ता। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। आपकी फरमाइश सुनिएगा दिन में 12 बजे। संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे आप सुन सकते हैं धारावाहिक जमुनिया का भाग 7। महिला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी इंदौर की ही प्रस्तुति में 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। फिल्म संगीत होगा 2 बजे और 2:30 बजे आपकी फरमाइश। युवावाणी कार्यक्रम रोज ही की तरह शाम 5:02 पर प्रसारित किया जाएगा। कल का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद उठाइए शाम 5:33 शाम 6:30 बजे और रात 8:15 पर। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं कल रात 10 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6 बजे। सुर्खियों में, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा कल रात 8 बजे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा का समय है कल रात 9:30 बजे, जिसमें कल आप सुन सकते हैं गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारे गजल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 बजे सुनिएगा आसकरण शर्मा का राग यमन में ख्याल गायन। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले, आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में 13 एमओयू हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। और यूपीएससी ने ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आधुनिक खेती और नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर है।
1: तो बदलाव तो आया है, लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती के भी खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर बहुत सारे प्रकार हुए। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मेरे अपने 50 बीघा के खेत में जब हम गेहूं करते थे तो वो गेहूं की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम होती थी, और आज वही खेत है लेकिन आज अच्छे बीज लगाने कारण से कई गुना ज्यादा खेती की हमारी फसल हो रही है। तो ये बदलाव तो आया, काफी बदलाव आया।
0: श्री यादव ने बताया कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता किया गया है, साथ ही हर साल 1 लाख गिर नस्ल की बच्चियां तैयार करने की योजना जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे और 5 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: खेल में भी अपने बच्चे आगे रहे, खेलना भी चाहिए कि नहीं? सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, इस बार भी करें कि नहीं करें? जोर से बताओ। इस बार भी की जाएगी ताकि खेल कूद में भी हमारे बच्चे पीछे ना रहे, भारत माता की। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, कैरियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को थोड़े सहयोग की जरूरत होती है, पढ़ के हम क्या करें। तो इसी कोचिंग क्लास में हर महीने कैरियर काउंसलिंग के लिए भी विशेषज्ञ आएंगे जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे कि उनको किस रास्ते जाना चाहिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। ये पुरस्कार शिक्षण, शोध और नवाचार, विद्यार्थियों तक पहुँच और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस साल पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा और खाली पदों पर नई भर्ती की जाएगी। आज भोपाल में वन विभाग के पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि वनकर्मी जंगल, वन्य प्राणियों और वन संपदा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग के 4,506 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उन्होंने सभी पदोन्नत कर्मचारियों को बधाई दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार उपलब्ध रखने और खाली पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की नियमित जाँच और निर्माणाधीन स्वास्थ्य सुविधाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। आज भोपाल में आयोजित समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रतिभाशाली युवा और पर्याप्त संसाधन है। केंद्रीय संस्थानों को कौशल शोध

और नवाचार के जरिए प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक संस्थान एक संकल्प मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माण की कार्य योजना है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच 13 MOU भी हुए। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर यानी आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की भव्य महासवारी श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली गई। वहीं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कल 25 अगस्त को सीवन नदी तट से कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकालेंगे। उधर जबलपुर में श्रावण के अंतिम दिन यानी आज सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भीड़ देखी गई। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। अनूपपुर के अमरकंटक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक पहुंचकर जालेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 25 अगस्त को ग्वालियर जिले के किसानों से संवाद और कृषि नवाचारों पर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 203 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की गई है। अशोकनगर जिले के 68 हितग्राहियों को 1,48,00,000 रुपए की राशि का अंतरण किया गया। दमोह में अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। रायसेन की सांची मार्ग स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुर में सघन मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम गतिविधियां संचालित की गई। अभियान के दौरान ग्राम कराहल और ककरधा में कुल 155 घरों का लार्वा सर्वेक्षण किया गया। धार की भूशाला में मां बागदेवी मातृशक्ति कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। राजगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जनगणना संबंधी कार्यों की समीक्षा की और सभी एसडीएम को संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। मंडला में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल नामदेव थोटे ने स्वदेशी स्वसहायता समूह सरी नैनपुर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों की खरीदारी की। अनूपपुर में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। गुना के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत शासकीय जिला चिकित्सालय गुना का निरीक्षण किया गया। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था, एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, अपन देख ही रहे हैं कि पानी की कमी दिन ब दिन होती जा रही है और गर्मी के समय में पानी की कमी से बहुत समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे शहर हो चाहे अपनों गांव हो। तो अपने लाने आज ज़रूरी है कि अपन वर्षा के जल को अपन संग्रहण करें। और वर्षा के समय अपन देखो बड़ी भारी मात्रा में पानी भी उपलब्ध होता है, और यदि अपन जाको सही तरीके से सहेजें तो ये पानी अपने लाने गर्मियों में काम आ सकता है। और अगर जाए अच्छे तरीके से नहीं सहेजेंगे तो अपन देखते हैं कि जो बहकर नालों और नदियों में चले जाते हैं। तो जो वर्षा को जो जल है बाको अगर अपन संरक्षण करेंगे तो बासे कहा है कि अपने जो भूजल है बाय बढ़ेगा, पानी की कमी दूर होगी और अपने भविष्य के लाने बहुत काम आएगी। अगर अपने गांव, खेत, तालाब और मेड़बंदी करें, कुओं को और छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण कर दें तो अपन वर्षा के जल को आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनत है जी संदेश।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: भैया अभी अपन ने सुनो जी संदेश और अपन चर्चा कर रहे थे कि वर्षा के जल को अपन कैसे संग्रहित करें। भैया अगर अपन वर्षा के जल को अच्छे से संग्रहण करेंगे तो जो सूखा पड़ता है या कम बारिश के समय जब अपन को सिंचाई के लाने पानी की ज़रूरत होते हैं तब अपन जब पानी को उपयोग कर सकते हैं। खेत, तालाब, सोखता गड्ढे और मेड़बंदी के माध्यम से अपन जो वर्षा को पानी है वो ज़मीन में पहुंचा सकते हैं। जैसे कहा है कि अपने जो कुएँ हैं, हैंडपम्प हैं, जो लंबे समय से पानी देने में परेशानी आती है, जिनमें कम पानी रहते हैं, जिनमें पानी अच्छा हो जाएगा और लंबे समय तक वे पानी दे सकते हैं। और वर्षा के पानी को सुरक्षित रखने से कहा है कि अपनी फसल को समय पर सिंचाई भी मिल जाएगी, जिससे कहा है कि अपना जो उत्पादन है वो भी नियमित रहेगा। भैया आज है सोमवार और आज अपना फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी भी है, तो आइए सुनते हैं आज अपनी फरमाइश का पहला लोकगीत, जिसकी फरमाइश की है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोरी बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें रेखा शर्मा के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाया जाए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: भैया रो, अभी अपन ने सुनो ये लोकगीत, और अपन चर्चा करते ही कर रहे थे कि वर्षा के जल को संरक्षण करना अपने लाने कितना उपयोगी है। अपन जब बारिश होए तो अपन को अपने खेत की जो मेड़ हैं बिने अपन को मजबूत कर लेनी चाहिए। बात से कहा है कि अपने जब खेत में पानी भर जाएगा तो अपन को सिंचाई में कम आवश्यकता पड़ेगी पानी की, और साथ ही साथ जा से कहा है कि अपनी उपजाऊ मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह के नहीं जाएगी। और इसके अलावा अपन को अपने जो गांव हैं जिनमें अपन को छोटे छोटे तालाबों को निर्माण कर लेने चाहिए। कहा है कि अपने किसान भैया पशुपालन तो करते हैं, तो जब गर्मी को मौसम आएगा तो अपन अपने पशुओं के लाने वहाँ से पानी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी खेती किसानी के लाने सिंचाई को भी उपयोग कर सकते हैं।

खाते हैं। इसके अलावा अपन देख खाते हैं कि अपने देश को जो मानसून है वो अनियमित रहते हैं, और सूखे के समय में या कम वर्षा के समय में अपन ने वर्षा के जल को अगर संरक्षित कर लिया है तो वो अपने काम आ सकता है। यही के साथ साथ अपन देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी लगातार निर्माण और पानी को अधिक उपयोग होवे के कारण कमी होते जा रहे हैं, तो वर्षा के जल को रिचार्ज पिट के माध्यम से अपन बाय ज़मीन में पहुंचा देंगे तो वो बहुत उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ घर, स्कूल, कार्यालय और अन्य भवनों की जो छत है बिन में वर्षा के जल को एकत्र कर बाय रिचार्ज पिट के माध्यम से ज़मीन में पहुंचा दें। तो जैसे कहा है कि अपने जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, अपनी जो बोरिंग है वे भी काम करने लगेंगी। भैया रो चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब अपन अपने फरमाइशी लोकगीत अगला लेते हैं, और जिसकी फरमाइश की है अकोला कंपनी भाटपारा छत्तीसगढ़ से गोपाल प्रजापति, नंद किशोर प्रजापति, राजू ऑपरेटर, चंचल ऑपरेटर, तुलसी ऑपरेटर, मोदी और परिवार के सभी लोग। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें जगदीश सिंह यादव के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाया जाए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: भैया रो, अभी अपन ने सुनो जी लोकगीत, और अपन चर्चा कर रहे थे वर्षा के जल को अगर अपन संग्रहित करेंगे तो अपने लाने बहुत फायदेमंद है। भैया रो, अगर अपन शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को अगर संरक्षित करेंगे तो इससे क्या है कि ये नालियों और सड़कों पर बहने की जगह वो संग्रहित हो जाएगा और अपने लाने बहुत उपयोगी हो जाएगा। जाके अलावा जो शहरी जल भराव की समस्या है वा को भी अपन कम कर सकते हैं। वर्षा के जल को संग्रहित करने के बाद अपन भी इनको पार्कों, पेड़ों और घरेलू बगीचों में उपयोग कर सकते हैं। गर्मियों में जब पानी को संकट होते हैं तब पहले से भूजल में रिचार्ज किए हुए जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जय के लाने अगर वर्षा के जल को केवल बारिश के समय मिलने वाला पानी नहीं बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा का आधार है, और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती पशुपालन जाके लाना बहुत महत्वपूर्ण है, और शहरी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण, जल भराव नियंत्रण और पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी सहायक है। इसलिए बारिश की हर बूंद को सहेजना गांव और शहर दोनों की सामूहिक जवाबदारी है। भैया अब अपन लेते हैं अपना अगला फरमाइशी लोकगीत, जिसकी फरमाइश की है ग्राम व पोस्ट तालगांव तहसील भंडार जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, शिवम कुमार नागल, इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें सावन का कोई भी लोकगीत सुनवाया जाए। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

भैया अभी अपन ने सुने ये लोकगीत, और अपनी जो अगली चर्चा का विषय है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भैया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने गांवों को सड़कों से जोड़ना है। यह योजना में दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। किसान भैया अपनी उपज को सड़कों के माध्यम से आसानी से बाजारों तक पहुँचा सकें और अपनी जो बच्चा बच्ची हैं वे शिक्षा प्राप्त करवे के लाने शहरी स्कूल कॉलेजों तक पहुंच सकें, अस्पताल एम्बुलेंस सेवाओं को अपने गांव तक बेहतर तरीके से पहुंचे। गांव में सड़कों से जुड़ने से क्या होगा कि व्यापार उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे, और जाके अलावा सड़कों का गांव से जुड़ने से बाजार बैंक तक अपन पहुँच आसानी से हो जाते हैं। अब अपन देखा था ना कि अपने बच्चा बच्ची अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर इनको कॉलेज जाना है, आगे की पढ़ाई करना है, तो अगर अपने गांव सड़कों से जुड़े होते हैं तो अपन आसानी से अपने बच्चा बच्ची शहर के कॉलेजों में जा सकते हैं। जाके अलावा अपनी जो उपज है, अपन जो सब्जियों को उत्पादन कराते हैं, फसल को उत्पादन कराते हैं, बिनके लाने अपन आसानी से बाजार पहुँच सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलती रहेगी, और अब अपन लेते हैं अगला अपना फरमाइशी लोकगीत, जिसकी फरमाइश की है अमलतास अमरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, और न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बाबरिया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय और श्रीमती ललिता बाई भारतीय। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें सावन का कोई लोकगीत सुनवाया जाए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: बन जाओ रखवारे ओ मोरे भैया।
1: भैया रो अभी अपन ने सुनो ये लोकगीत और अपन चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। भैया रो सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं है बल्कि ये अपने ग्रामीण विकास की आधारभूत आवश्यकता। अच्छी सड़क होने से अपने जो किसान भैया हैं वे कम समय पर कम लागत में अपनी फसल बाजार तक पहुँचा सकते हैं। दूध सब्जियाँ फल और अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री भी आसान हो सकता है। और जाके अलावा जब अपनी सड़कें अच्छी होंगी तो अपने जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल शिक्षा प्राप्त करवे के लाने अगर भी दूर भी जाते हैं तो बिना सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ अपनी जो गर्भवती महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं और बीमार लोग हैं बिना भी अपन अस्पताल आसानी से पहुँचा सकते हैं। भैया रो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना का मूल उद्देश्य सड़क अच्छी सड़क बनाना नहीं है बल्कि गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। अच्छी सड़कों से आजकल अपन देख ही रहे हैं कि अपने जो गांव हैं वे धीरे धीरे सड़क के द्वारा शहरों से जुड़ जा रहे हैं। जैसे कहा है कि अपने जो किसान हैं विद्यार्थी हैं व्यापारी हैं मजदूर हैं और आम ग्रामीण हैं वे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसलिए ये योजना समृद्ध आत्मनिर्भर और विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया रो अगर अपनी सड़कें गांव से जुड़ेंगी गांव की सड़कें अगर शहरों से जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर अपने गांव का आर्थिक विकास भी होगा और अपने गांव में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। भैया रो चर्चा अपनी चलती रहेगी। अब सुनते हैं अपने अगलो फरमाइशी लोकगीत जिसकी फरमाइश की है छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती बड़े भैया हरिराम बड़े भैया दशरथ श्रीमती शीला भाभी यशोदा भगवती ममता देवी रामकली अंश मोहिनी गोलू नीरज आरती भारती और काजल करण और बाबू। इन्होंने फरमाइश की है कि इन्हें द्वारिका प्रसाद कुशवाहा के स्वर में कोई लोकगीत सुनवाया जाए। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

भैयारों अभी अपन ने सुनो जो प्यारे सो लोकगीत और जाके साथ साथ अब हो गई ये चलबे की बेला। तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: राजारमन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: राजारमन जी, विशाखापट्टनम में जो ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कौन से ऐसे विषय रहे जिन पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई? और ये जो ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र पारित हुआ है, इसका खेल सहयोग की दृष्टि से क्या महत्व है?
3: सबसे पहले हम सबको ये बात ध्यान में रखना होगा कि भारत ब्रिक्स का चेयर है। अभी 2 साल तक चेयर रहेगा और अपने अफवाही में जब आप चेयर हो तो आप कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। और भारत के खेल मंत्री बाकी खेल मंत्रियों के साथ मिले हैं। विदेश के ब्रिक्स देशों के कई सारे खेल मंत्री आए हुए थे विशाखापट्टनम में, उनके साथ चर्चा हुई और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ जहां उन्होंने 3 मुद्दों की बात की है। एक वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई है जहां पे स्पोर्ट्स साइंस होगा, एआई का प्रयोग हो सकता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन होगा और भारत इसको लीड करेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मेक इन इंडिया की बात होती है लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव होगा जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए नवंबर महीने में उदयपुर में होगा। और तीसरा जो ग्रुप है वो जो हमारे अपने ट्रेडिशनल खेल है जैसे कबड्डी और खो खो, उन खेलों को और योगा, उन खेलों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। बाकी ब्रिक्स के देश भी अपने खेल के बारे में बात करें।

0: ये तीन मुद्दों को लेके एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कल विशाखापट्टनम में
1: जी
0: हुआ है।
1: रजनमन जी, अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स खेल साझेदारी बनाने की आवश्यकता पर विशेष तौर पर जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एथलीटों, कोचों और खेल विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम सहयोग करते हैं तो सभी सदस्य देशों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो उन्होंने पहल की है, ये जो बात उन्होंने कही है, इसके क्या मायने बनते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है कि बाकी देश जो ब्रिक्स के ही क्यों ना हो और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज क्यों ना हो, पार्टनर कंट्रीज भी हो, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। चाइना अगर कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, चाइना अगर कुछ अपने जो तौर तरीके हैं खेल बढ़ाने का वो अपने साथ शेयर करेगा बाकी ब्रिक्स देशों के साथ, उनका भी भला हो सकता है। ब्राजील जैसा खेल जहाँ पे फुटबॉल हम सब जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है, एथलेटिक्स वहां पे काफी पॉपुलर है, उनके साथ कुछ तालमेल बैठता है तो बहुत अच्छी बात होगी। साउथ अफ्रीका जैसा देश या रशिया जैसा देश जहां पे खेल को बहुत अहमियत दी जाती है, इनके साथ बैठना, इनके साथ एमओयूज बनाना और फिर उनसे सीखना और फिर कुछ जो सीख है उसको लेके हम जो 2036 ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं उसके लिए अगर प्रयोग करें और फिर हमारे अपने देश में खेल का बढ़ावा हो, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। मनसुख मंडाविया जी का यही मकसद रहा होगा कि हम कुछ बाकी देशों से सीखें और फिर हमारे अपने देश को जो हम चाहते हैं कि टॉप 10 में ओलंपिक गेम्स में आए, मेडल तालिका में हम ऊपर बढ़े, इसका भला हो सकता है। न सिर्फ हमारे देश का, बाकी देश जो पार्टनर कंट्रीज है उनका भी भला हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि एक बैठक हुई है, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आया है, उससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया
1: जी
0: का एक बेहतरीन ये एक डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी बदौलत देश की उन्नति हो सकती है
1: जी
0: और ये हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी में लिखा गया है। इसको लेके हम सब आप सोच रहे हैं कि खेल को और कैसे बढ़ावा दें, ये मनसुख मंडाविया जी का सोच है और फिर यही वजह हो सकती है कि उन्होंने ये तीन मुद्दों की वहां पे बात की है।
1: जी जैसे आपने तीन मुद्दों का जिक्र किया है तो खेल के कार्य समूह की स्थापना की भी बात की गई है। आपने भी बताया कि खेल में विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो आधुनिक तकनीकें ये जो हैं, ये खेल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को किस प्रकार बेहतर बना सकती है, खासतौर पर जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत अब लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लेता है और मेडल्स भी अब पहले की संख्या में आ रहे हैं।
0: खेल विज्ञान की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करो या फिर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें या फिर फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करें, ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा योगदान है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात हमारे समझ में शायद पिछले 10 साल में आई है और हम स्पोर्ट्स साइंस को ज्यादा यूज करने लगे हैं। अभी भी हम कुछ 10-15 साल पीछे होंगे, अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनसे हम 10-15 साल पीछे हैं। इसीलिए शायद ये बहुत अहम है कि स्पोर्ट्स साइंस को अपनाना ग्रासरूट लेवल पर खास करके, फिर ऑटोमेटिकली वो आप अगर स्पोर्ट्स साइंस को अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो एलिट लेवल में पहुंचते पहुंचते आप उसका प्रयोग ज्यादा करेंगे।
1: जी
0: आज की तारीख में कुछ थोड़ा सा रिलैक्टेंस है स्पोर्ट्स साइंस को यूज करने का एथलीट के मन में, लेकिन वो बदलाव आ रहा है। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी बता दिए हैं कि स्पोर्ट्स साइंस को किस तरीके से अपना सकते हैं और अपना खेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल पैरामीटर नहीं लेकिन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स और जो टैक्टिकल अवेयरनेस है बच्चों का ये कैसा है, इसको लेके अगर एआई को यूज करते हुए एक टूल बना सकते हैं तो शायद खेल बहुत आगे बढ़ेगा, खास करके हमारे देश में जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बच्चों का अगर टैलेंट जल्दी आइडेंटिफाई करना है तो एआई का इस्तेमाल जरूर हो सकता है।
1: रजनमन जी, मेक इन इंडिया, प्ले इन इंडिया और ग्रो विद इंडिया के माध्यम से भारत खेल क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता है। यहाँ पर हम बात इसकी करते हैं कि वैश्विक निर्माताओं, प्रौद्योगिकी की कंपनियों और निवेशकों को भारत में अगर इस पहल के माध्यम से आकर्षित किया जाता है तो हमें और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? घरेलू खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है?
0: बहुत सारा जो खेल का इक्विपमेंट है वो हम इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, चाहे वो जैवलिन ही क्यों ना हो। अभी बनने लगा है भारत में जैवलिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जैवलिन बनने लगा है। मैं जैवलिन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारा जो इक्विपमेंट है ये हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट को कम करें और फिर हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दें, मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर करें, तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। वो सही टेक्निक

0: और सही इक्विपमेंट अगर यूज करने लगे बचपन से, काफी यंग एज से अगर यूज करने लगेंगे तो आगे चल के उनका भला हो सकता है। इसीलिए मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है अगर हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को समझ आती है बात। और क्योंकि हम ग्लोबल कॉम्पिटिशन करना है, जो अमेरिकन कंपनी हो या यूरोपियन कंपनी या जापान या कोरिया के कंपनी हो, इनके साथ अगर आप टक्कर लेना है तो आपका स्टैंडर्ड उठाना है। ये शायद एक बहुत अहम बात है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव होगा नवंबर के महीने में उदयपुर में, ब्रिक्स के देश वहां पे मिलेंगे और ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इनको एंकरेजमेंट मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज में जाकर
1: जी
0: ये अपना कुछ सामान एक्सपोर्ट कर सके।
1: राजा रमन जी, भारत ने पैरा स्पोर्ट्स और खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। खेलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को समान अवसर देने की बात भी की जाती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, ये कैसी भावना को आगे बढ़ाती है और खेल की दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो इसके क्या महत्व आपको नजर आते हैं? कैसा आपको लगता है कि ये एक अपने आप में अनूठी पहल है?
0: अगर आप ओलंपिक गेम्स के स्तर की बात करें तो वहां पे अधिकतर मेडल महिला जीतती है। अगर आप चाइना को देखें या इवन अमेरिका को देखें, वहां पे महिला ज्यादा जीतती है मेडल। और हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आई है कि बहुत ज्यादा महिला, उनका संख्या बढ़े जो खेल में भाग लेते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप होकर आए। ये अच्छी बात है। और एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन में क्योंकि मेडल्स महिला जीत सकती है, ज्यादा जीत सकती है और हमारी महिलाएं जीती भी हैं, ये जरूरी हो जाता है कि और ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा महिला खेलें और उनका जो स्टैंडर्ड है वो बेटर होता जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें, सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करें,
1: जी
0: जब लड़का या लड़की, लड़कियां ज्यादातर खेलना कम करती हैं, अगर लड़की खेलने लगती है तो समाज का एक बढ़ावा हो सकता है क्योंकि खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर ज्यादातर लड़कियों को हम खेलने नहीं देते हैं तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। खेल आपको एक भावना सिखाती है जहां पे आप टीम वर्क सीख सकते हैं, जहां पे लीडरशिप सीख सकते हैं, हारना और जीतना सीख सकते हैं, जीना सीख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा महिला, खास करके युवा लड़कियां हमारी खेल में आए और फिर हिस्सा ले, नॉट जस्ट टू कम्पीट बट वो अपना डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं से समाज का भी डेवलपमेंट हो जाए।
1: जी राजा रमन जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्र निर्माण में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया है और उनका ये कहना है कि भारत के खेल परिवेश में अवसरों का निर्माण हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आपसे मैं पूछूं तो किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि खेल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान जरूर देते हैं?
0: सबसे पहले अगर हम जो ग्रास रूट, जो हमारे गली मोहल्ले में प्लेग्राउंड्स है, चाहे वो म्युनिसिपल प्लेग्राउंड क्यों ना हो या फिर पंचायत का प्लेग्राउंड क्यों ना हो, वहां पे कोचेस सही हो, वहां पे बच्चों को खेलने का जो मजा है वो सही तरीके से सिखाए, जो वैल्यूज है दोस्ती करने का या फिर एक्सेलेंस की ओर बढ़ने का या फिर खेल के जो रूल्स है, जो नियम है उनको रेस्पेक्ट करने का, ये अगर हम सीख लेते हैं तो नॉर्मल लाइफ भी हमारा बेहतर हो सकता है। लेकिन कोचेस बहुत जरूरी है, कोच डेवलपमेंट पे फोकस देना। और जो खेलो इंडिया का जो अभी हाल ही में बजट अनाउंस हुआ है, उसमें खुशी की बात यह है कि कोच डेवलपमेंट के लिए काफी पैसा स्पेयर हुआ है। अगर हम उस स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर जब बच्चा खेलने जाता है वहां पे अगर कोचिंग सही हो जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे हम स्कूल में करते हैं, जब आप बढ़ते होते हैं तो कोई आपको अक्षर सिखाते हैं, उसके बाद कोई वाक्य बनाना सिखाते हैं, उसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर एसेस लिखते हैं, किताब भी लिख सकते हैं, आपको हर लेवल पे एक अलग अध्यापक होता है। वही तरीके से कोचिंग भी बहुत जरूरी है कि ग्रास रूट में अच्छे कोचेस मिले, तब जाके भारत का खेल का जो निर्माण है ये और अच्छा हो सकता है।
1: जी, ब्रिक्स खेल सहयोग में एथलीटों और कोचों का अगर आदान प्रदान होता है तो इसका क्या महत्व हो सकता है? अलग अलग देशों के खिलाड़ी और प्रशिक्षक एक दूसरे के देश में पहुंचे या उनसे बात करें, अनुभवों को साझा करें, तकनीकों को साझा करें, तो भारत को इससे किस तरह से लाभ हो सकता है? और ये आदान प्रदान जो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे सहायक होगा?
0: ये टू वे ट्रैफिक होगा। ब्रिक्स का जो अभी हुआ है, बात हो रही है, लगातार होता आया कई सालों से, ये टू वे ट्रैफिक है। उदाहरण की बात करूं मैं तो, अगर ब्राजील से कुछ फुटबॉल कोचेस आते हैं इधर और फिर हमारे बच्चों, लड़के लड़कियों को सिखाते हैं सही तौर तरीके, फुटबॉल खेलने के टेक्निक सही हो जाता उनका, हमारे कुछ शूटिंग के कोचेस जा सकते हैं वहां पे। तो ये एक पार्टनरशिप ऐसे ही बनता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एमओयूज बनते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स जब ब्रिक्स जैसा एक बड़ा सा ग्रुप है, इसके अंदर भी अगर लगातार एक्सचेंजेस होते रहे तो बहुत अच्छी बात होती। शायद पिछले साल कजाकिस्तान में या कहीं ब्रिक्स के देश मिलकर खेल खेले थे, पोजदान में हुआ था खेल, और ऐसा जगह जब हम मिलते हैं तो हमारा खेल और बेहतर होता है। ये हमारी ए टीम जाती नहीं है वहां पे, जो डेवलपमेंट लेवल एथलीट्स है उनके लिए भला होगा कि एक और अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में भी हो सकता है और ट्रेनिंग में भी बेहतरी हो सकती है, जो भारत और दूसरे देश है ब्रिक्स के, इनके साथ अगर हम सब का तालमेल बैठ जाए। और यही बात है कि विशाखापट्टनम का डिक्लेरेशन है कि हम सब मिलके काम करेंगे, हमारी उन्नति होगी और एक दूसरे का साथ देते देते दुनिया का भी भला हो जाएगा।
1: खेलों के माध्यम से युवा विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये माना गया है कि इसमें देश के युवाओं का व्यक्तित्व निर्माण होगा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही खेलों को आगे बढ़ाने में भी इस पहल का काफी महत्व हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवहारिक सहयोग हम इस पहल के माध्यम से करने जा रहे हैं, इसका फायदा हमारे देश के युवा किस तरह से उठा सकते हैं?
0: अगर इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, खास करके अगर आप एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम में शामिल नहीं होते, आप अगर डेवलपमेंट एथलीट है तो आप इन देशों में जाके खेल सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव स्तर उठा सकते हैं। कुछ ऐसे देश है जहाँ पे एथलेटिक्स हो या स्विमिंग हो या शूटिंग हो, ये अच्छे स्तर पर होता है। कुछ देश है जहाँ पे फुटबॉल और बेहतर होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा हमारे युवाओं को हम कौन से ऐसे देश में जाके भेज सके ताकि उनका कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है वो और बेहतर हो जाए, ताकि वो पूरी तरीके से तैयार हो के ओलंपिक गेम्स में अपना जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसको सही तरीके से दिखाए और फिर भारत के लिए कुछ और मेडल से कराए। एक बहुत अच्छा अवसर है भारत के पास, भारत के युवाओं के पास, कि ब्रिक्स देशों में जाके खेले और फिर अपना खेल को बेहतर करें।
1: जी राजा रमन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फैज़ अनवर ने गीत को लिखा, संगीत डब्बू मलिक का। फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया।

कार्यक्रम का अगला गीत जोधा अकबर फिल्म से लिया है, जिसे गाया सोनू निगम और मधुश्री ने। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत में पिरोया ए आर रहमान ने।

0: नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा, विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया, शंघाई फिल्म का ये गाना। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। कुछ और गाने आप सुन सकते हैं आज रात 10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा तथा इन चौराहों के माध्यम से आने वाले समस्त स्थानों पर किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह यानी 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अतः आम नागरिकों से अपील है कि ये प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस

0: अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
4: भारत को $70 trillion की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों

0: से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारत चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये

0: सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट

0: पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade, and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. The Russian President credited Prime Minister Narendra Modi for the growing partnership between New Delhi and Moscow. He said, External Affairs Minister's visit underscores the level of relations that has been established between Russia and India for decades. He said the two countries are cooperating in practice.

0: दौरे के दौरान जनाब जयशंकर का रूस के अपने हमनसब सर्गेई लेवरोव के साथ इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात के तबादले के मकसद से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल चीन के दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। जनाब डोवाल भारत चीन सरहदी मुजाकरात पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर में चीन के अपने हमनसब और वजीर खारजा वैंग यी से बातचीत करेंगे। आज मीडिया को खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के बारे में तफसीलात बताते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियान ने कहा कि जनाब डोवाल और जनाब वैंग सरहदी मामले समेत दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2020 गलवान वादी कशीदगी और मशरकी लद्दाख में लंबे अरसे तक फौजी तातुल के बाद भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में रखना पड़ा था, लेकिन दोनों मुल्कों ने उस वक्त से अब तक बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों को नसीहत की है कि वो तैनाती के अपने अपने मुल्कों में बुनियादी सतह पर मसरूफ अमल रहें और मुकामी बिरादरियों के साथ भारत के ताल्लुकात को वसअत दें। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 2025 बैच के 50 IFS ऑफिसर ट्रेनीज से आज सेवा तीर्थ में बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को फरोग दें और लोगों के साथ अपनी मसरूफियात को बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ने भारत की तहजीबी क़ुव्वत को टेक्नोलॉजी इख्तरा और मौसर बातचीत से मरबूत करते हुए भारत की आलमी मसरूफियात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भी ऑफिसर ट्रेनीज की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म ने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वो दुनिया के साथ भारत की इक्तसादी मसरूफियात में तामुली अनासिर के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज से दरख्वास्त की कि वो भारत की सकाफती तहजीबी और जुग्राफियाई क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को ज़्यादा पुरकशिश आलमी सियाहती मकाम बनाने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के नौजवान अफराद की भारत में दिलचस्पी जगाने के लिए भारत को जानिए क्विज़ को फ़रोग देने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आज़म ने इस तरह की पहल को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत AI और गेमिंग के इस्तेमाल की भी हौसला अफजाई की। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज ने अपनी तरबियत और भारत दर्शन के तजुर्बात बयान किए। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में असातिज़ा और तदरीसी अमले को कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। इन असातिज़ा में आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक के असातिज़ा शामिल होंगे। ये इनामात असातिज़ा और तदरीसी अमले को मौसर दसरो तदरीस आउटरीच सरगर्मियों तहकीक और जिदत तराजी और स्पॉन्सर्ड रिसर्च फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रामों और कंसल्टेंसी टीचिंग जैसे शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर दिए जाते हैं। असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 के लिए इस साल 26 मई से 20 जुलाई के दरमियान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन तर्ज पर दरख्वास्तें तलब की गई थीं। इनमें जन भागीदारी के हिस्से के तौर पर बजाते खुद इदारा जाति और साथी असातिज़ा की नामजदगी जैसे जुमरे शामिल रहे। भारत ने क़ैद साली के खिलाफ मज़ाहमत को मुस्तहकम करने और ज़मीन की बहाली में मदद के लिए मुतनव्वे खातिर ख़्वाह काबिले पेशगोई और पायदार बैनुल अक्वामी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। मंगोलिया के उलान बातार में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP17 के 17वें इजलास के दौरान वजारती मुकालमे से खिताब करते हुए माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने यह बात कही। वजारती मुकालमे का उन्वान था सेहतमंद ज़मीन और क़ैद सालिंग के तई मज़ाहमत के लिए इख्तराई माशी मेकानिज़म। इस दौरान वजीर मौसूफ ने ज़मीन की बहाली और क़ैद साली के तई मज़ाहमत से मुतालिक भारत के इख्तराई और मुतनव्वे मालियाती निज़ाम को नुमाया किया। जनाब यादव ने ज़मीन की बहाली के लिए पायदार सरमायाकारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन की बहाली सिर्फ अदा की गई कीमत नहीं है बल्कि ये खुराक पानी हयातियाती तनवो गुजर बसर और तवील मुद्दती लचक में सरमायाकारी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि खित्ते अराजी का वीरान होना ज़मीन की ज़रखेज़ी और मेयार में गिरावट और क़ैद साली जिस पैमाने पर हो रही है उससे निमटने के लिए फाइनेंस के ऐसे मुतनव्वे काबिल पेशगोई और पायदार ज़राए की ज़रूरत है जो अवामी बजट से अलहदा हों और मजबूत पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर मबनी हों। अपने खिताब के अख्ताम में जनाब यादव ने मकसद के हसूल की राह में अपने तजुर्बात इकदाम इदारा जाती इंतजाम और हासिल शुदा मालूम साझा करने की भारत की अहद बस्तगी की तोसीक की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कायम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों की तशवीश के इजाले की खातिर अगले दो महीने के दौरान मौजूदा जवाबित में तरमीम करने के नए जाब्ते मुतारिफ कराएगा। टोक्यो में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने दिन के आगाज में दो बड़े कॉरपोरेशन से मुलाकात की, जिनमें से एक भारत में सेमीकंडक्टर से मुतालिक साजो सामान तैयार करने का मंसूबा बना रही है और दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों से मुतालिक शोबों में कारोबार करना चाहती है। जनाब गोयल ने जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वक्त से मुलाकात की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। अपने दौरे में टोक्यो, नागोया और ओसाका के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, स्टील, ऑटोमोबाइल, मालियाती खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप समेत अहम शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात शामिल है। यकसां अदायगी निज़ाम यूपीआई ने डिजिटल अदायगियों के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत की डिजिटल अदायगियों के इको निज़ाम में रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभरा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए यूपीआई लेनदेन का हजम बढ़कर तकरीबन 13,000 गुना हो गया है। वजारत खजाना ने कहा कि सालाना लेनदेन का तनासुब साल 2016-17 के 1.78 करोड़ लेनदेन से बढ़कर साल 2025-26 में 24,162 करोड़ लेनदेन से तजावुज कर गया है। लेनदेन की मालियत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जो इसी मुद्दत के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब के दौरान नए डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप का आगाज किया। जनाब सिंधिया ने 10 रियासतों में वाक़ 14 डाक दफातर की 9 तामीरशुदा इमारतों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान जनाब सिंधिया ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: इस दौरान मवासिलात के वजीर ममलकत डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने भी डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप के फवायद पर रोशनी डाली। भारतीय महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शुमाल मशरकी भारत, बिहार, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और वस्ती महाराष्ट्र में भी बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा मौसमियात ने जनूबी अंदरून कर्नाटक, हिमालय के तराई वाले मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आज औसत से तेज बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर जाने के सबब गाड़ियों की आमद रफ्त में रखना पड़ा और ट्रैफिक जाम के वाकयात दरपेश आए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर गुरुग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। पानी भरने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कॉरपोरेट और प्राइवेट दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। तेज बारिश के सबब दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों में रखना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2 बैनुल-अक़वामी परवाजों समेत 14 परवाजों के रास्ते बदलने पड़े। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल भी औसत दर्जे की बारिश और बादल छाए रहने की पेशगोई की है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: इधर ओडिशा में शदीद मानसून की सूरतहाल के जेरे असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरतहाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरतहाल तशवीशनाक है, जहां पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासिर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंझर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क रास्ता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ایران نے خبردار کیا ہے کہ آج رات اعلان کی جانے والی ممکنہ پابندیوں سے خطے میں امن نہیں آئے گا. ساتھ ہی ایران نے کسی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دینے کا انتباہ دیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران توسیعی امریکی پابندیوں کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرے گا، جن میں واشنگٹن کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کو نشانہ بنانے والے اقدامات بھی شامل ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کے سخت نتائج بھگتنے ہوں گے اور کہا کہ ایران کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے پر مذاکرات پر تعطل کے ہفتوں بعد ایران کی جانب سے یہ انتباہ دیا گیا. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے سوشل میڈیا سے نوجوان نسل کو ہو رہے نقصان کا حوالہ دیتے ہوئے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے. کرکٹ میں کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے بارش سے متاثرہ میچ میں 2 وکٹ کے نقصان پر 8 رن بنا لیے ہیں. اس سے قبل بھارت نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 503 رن پر ڈکلیئر کر دی تھی. بھارت کی جانب سے دھروو جریل شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 115 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے بھارت روس تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. صدر پوتین نے بھارت کو کھاد کی سپلائی میں اضافہ کرنے کی پیشکش کی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال 25 بھارت چین سرحدی مذاکرات میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں. بھارت نے زمین کی بحالی اور قید سالی کے تئیں مزاحمت پیدا کرنے میں مدد کے لیے متنوع اور خاطر خواہ بین الاقوامی فائنینسنگ کی اپیل کی ہے. چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اوڈیشہ میں لگاتار بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا ہے اور ندیوں کی سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کولمبو کرکٹ ٹیسٹ میں دھروو جریل اور دیودت پڈیکل کی سینچریوں کی بدولت بھارت نے میزبان سری لنکا کے خلاف 503 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.

0: नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीख कर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। नंबर है 0112317178 0112317168 0112317166 0112317166 आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप हैशटैग #AIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रही हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के। साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाए या कुछ पैसे कमा पाए। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सी हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके जरूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
0: जी। आज प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन से स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा मिल सकती हैं। इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल स्टेट है, बाकी जगह भी है, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियां फिर हैं। हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा
0: जी। और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
3: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
0: नमस्ते
3: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
2: भूपेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है, तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, पार्टी चलाए गए हैं, जहाँ क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
1: साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
0: मानसी जी आपने ITI की बात करी है तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है, तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
1: जी PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोजगार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो इसी सोच के द्वारा PM सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर, उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें, तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक हमारे देश में 1000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा, एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहाँ प्रावधान किया गया है, और ऐसे पूरी स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है, इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं, वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलप इम्प्लीमेंट करेगा. बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी पर फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है, कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं. तो हमारे आईटीआईज को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब पीएमसी तो लाता है.
0: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है. और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं. जी राकेश जी.
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला. और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न.
1: जी राकेश जी धन्यवाद. कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है. देखिए सर्वप्रथम तो हमारी जो आईटीआईज हैं हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन आईटीआईज के द्वारा जो है वहाँ बहुत से आईटीआईज में हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं. साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं. मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप्स के लिए जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं. तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने.
2: जी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा. खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है. तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं. हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं. आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पर मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है. तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं.
0: प्रशांत जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
2: मैम
1: जी सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारे मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं. वैसे ही DDU GKY स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है. जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83-84% जो हैं वो महिलाएं ही हैं. तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला. पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं. आप देखिए हमारी कुछ आईटीआईज हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं. एक आईटीआई जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा है,
0: ई रिक्शा तक चला रही हैं,
1: पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं. तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है. अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है, तो मनोबल तो पड़ रहा है। अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
0: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी।
5: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार।
5: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्ते।
5: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आईटी से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ, मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं।
1: जी रवि जी, आपने आईटीआई से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में, तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आप आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन्होंने आईटीआई से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, वो यदि पढ़ाना चाहते हैं आईटीआई इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप एनएसटीआईज या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो, और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
0: प्रशांत जी, मानसी जी ने बता दी कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो एनएसडीसी प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
2: देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप आईटीआई से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे बच्चे नैप्स में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पर इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं, तो उससे नौकरियां काफी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल हब, अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियाँ हैं, काफ़ी सारी नौकरियाँ, लाखों में नौकरियाँ वहाँ पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं, अभी बेलूर घाट बंगाल में काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
0: जी प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो है आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
2: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउजर के द्वारा, और आप वहां जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है
0: जी।
2: इसमें 8800055555 ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहां पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
0: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
6: धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
6: मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिसशिप नहीं हो, क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का मापदंड?
0: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
6: जी,
0: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
6: जी,
1: तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप सिद्ध वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर साथ में लेकर, टाइप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज के साथ, और वो 12वीं 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीज़ें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
0: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं मानसी जी, आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
1: जी, आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं, इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं, तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है प्रशांत जी।
2: जी, इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं, जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेजी से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे, तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज्यादा सुनिश्चित करते हैं
0: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, संजीव जी। जी संजीव जी।
7: जी नमस्कार और सभी को।
0: नमस्कार
7: जी। मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUGKY में यहाँ यमुनानगर से, और इसके मैंने फिर मिलेगा जिन तक ना तो कोई जॉब मिली ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला जी, बैचलर ट्रेनिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
0: संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है
7: जी। DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया।
0: बैटरी रिपेयरिंग,
7: हाँ जी। और
0: ठीक है,
7: ड्रोन का भी कोर्स किया।
0: ड्रोन का भी किया आपने जी।
7: हाँ जी। तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली ना एग्जाम हुआ और मेरी एज 44 इयर्स होगी, तो ये बोलते हैं कई जगह के भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम।
0: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज्यादा है, तो कैसे होगा
2: जी। संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है, मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहाँ ड्रोन का एप्लीकेशन है।
0: प्रशांत जी आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है
2: जी। इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSCC में करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है
0: जी।
2: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है
0: जी। और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी।
8: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपकी टीम को नमस्कार, आपने मेरी बातों को सुना। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई इसकी

0: और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दें।

0: कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो टीम की शंघाई होने वाली है
2: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशंस खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहतनाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे डीजे सुनिए आपकी पसंद कार्यक्रम, आपकी पसंद का गाने हम लेकर हाजिर हैं। सभी श्रोताओं को छाया बाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनवा रहे हैं अनपढ़ फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है। राजा मेहंदी अली खां ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का है। और सुनना चाहा है महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप केशव और संतोष पगारिया, वंदना नगर इंदौर से पतराय रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी और ललिता नारायण खर्चे का। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत, मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो और जुनू भी तुम हो, एहसास तुम हो, प्यास भी तुम ही हो।

साहू नगर यवतमाल से पत्र आया। राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशन रोशनी स्वीट बेबी प्रियांशी गौरीनगर इंदौर से ये पत्र आया है। आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या और करिश्मा का मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये चिट्ठी हम तक पहुँचाई है। इन सभी श्रोताओं ने अभिजीत गवाणकर सरिता प्रिंस एकांश सिद्धांत प्रणीता अर्जुन गवाणकर वैशाली शैलेश सुमित और ध्वनि गवाणकर ने इन श्रोताओं की पसंद है अर्थ फिल्म की ये गज़ल जिसे आवाज़ दी जगजीत सिंह ने। कैफी अजमी के बोल संगीत जगजीत सिंह का।

वो कौन थी? जी हाँ, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत श्रोताओं ने पसंद किया है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का। सुनना चाहा है धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे ने। इन्हीं का साथ दिया अनुत डेरे ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से पत्र आया प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। मेरी बेपनाह मोहब्बत का एक ही उसूल है, मेरी बेपनाह मोहब्बत का एक ही उसूल है, मिले या ना मिले तो मुझे हर हाल में कबूल है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इन श्रोताओं की पसंद का जिन्होंने हमें पत्र भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से ये पत्र आया है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खत्री इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है आरजू फिल्म का ये गाना जिसे आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने हसरत जयपुरी के बोलों को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने
1: चल के तेरी आंखों से

घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र आया। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमति शीतल राजेश। इन सभी श्रोताओं की पसंद है कफील अजहर का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पति किया, कर्तव्य फिल्म का गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया वक्त फिल्म का गीत। साहिल लुधियानवी के बोल संगीत रवि का है। सुनना चाहा छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पेपरिया से दुर्गाराम साहू ने।

आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सौरभ व्रत चक्रवर्ती का सुरबहार वादन, राग छाया नट।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे सौरभ व्रत चक्रवर्ती का सुरबहार वादन राग छायानट। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और

0: Heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over East and Northeast India, Uttar Pradesh, South Interior Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Mahe, and Vidarbha and Madhya Maharashtra tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।